0: FIR against NSUI women workers. Help us understand the context in which this case has been filed.
1: देखिए बिल्कुल, जो दिल्ली पुलिस की कांस्टेबल चंचल यादव हैं, वो राजीव चौक का मेट्रो स्टेशन से कुछ जो एनएसआई के वर्कर्स थे उनको डिटेन करके बस में ले जा रही थी। उसी दौरान एक जो महिला वर्कर थी उस पर एलिगेशन ये है कि उसने जो कांस्टेबल थी उसके बाल खींचे और उसके साथ में मारपीट की, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल है। उसमें हालांकि कांस्टेबल ही मारपीट करते हुए दिखाई दे रही है, लेकिन कांस्टेबल का एलिगेशन ये है कि वो वर्दी में थी और उसको पहले एनएसआई वर्कर ने उसके बाल खींची और उसको थप्पड़ मारा, उसके बाद उसने कंट्रोल करने के लिए उसको जो है उसके साथ मारपीट की। तो इस तरह से जो महिला कांस्टेबल है चंचल यादव, उसने उसकी मेडिकल जांच हुई थी, एमएससी हुई थी, और एमएससी के बाद दिल्ली पुलिस ने एनएसआई वर्कर्स के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। और पुलिस के
0: Right, Mukesh, thank you so much for joining us early this morning on the broadcast and sharing those important updates with us. In fact, you know, we also have an important update there. They remember the leader of opposition, Rahul Gandhi, held a press conference with these NSUI workers and went on to call the female NSUI workers as sher. Let's also listen into what the leader of opposition had to say.
2: अच्छा, ये मैं special introduction करना चाहता हूँ। ये शेर नहीं है। ये शेर नहीं है। जान रहे हो उसको? ये शेर नहीं है, इसको मारा, कोई डर नहीं लगा? डर लगा?
3: नहीं लगा सर। नहीं लगा, नहीं लगा।
2: नफरत थी दिल में?
3: नफरत नहीं थी, प्रेम था। जितना मारा हमने ये बोला खुला आज मन जितना है उतना भर के मारो।
0: All right, now moving on to more updates and this time focusing on the state of Punjab. Now the murder of anti-drugs activist Parvinder Singh Chota has triggered outrage all across Punjab. The BJP, the Congress, the Shiromani Akali Dal, they've all cornered the Maan government as protesters call for a Punjab band. The Chief Minister Bhagwant Mann has promised strict action. Meanwhile, Chota's family and supporters held a candlelight vigil demanding justice. Well, there is anger over his killing which continues to grow, with protesters calling for a Punjab band and stronger action against the drug menace. The opposition, remember, has launched a united attack on the Chief Minister Bhagwant Mann. Congress alleges police complicity. The BJP questions the collapse of law and order, while the Shiromani Akali Dal backs the band call and demands the Chief Minister's resignation. Chief Minister Bhagwant Mann, meanwhile, has assured the family that no culprit will be spared in this case. Promising the strictest action, the Mann government says that the conspiracy behind the murder will be investigated and drug trafficking will not be tolerated in the state of Punjab.
4: ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੋਟੇ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਨ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ DGP, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ DGP ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪੇ ਹੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਇਸ ਕਤਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੈਂਟਰਲ ਬਿਊਰੋ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ CBI ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ, ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
5: ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਮੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨੇ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਉਸਕੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਵੀ ਹੈਂਡ ਸੇ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਆਜ ਹਮਾਰੇ ਮਾਨਨੀਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ इसको लेके अपना बयान भी दिया है, स्टेटमेंट जारी करी है, और दोषियों के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज हो चुका है और उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। बिल्कुल, जो भी इलीगल काम पंजाब में करेगा उसके साथ हम सख्ती से पेश आएंगे। और दूसरा, मैं परमिंदर जी के परिवार के साथ संवेदना प्रकट करता हूँ, क्योंकि बहुत उनके परिवार के लिए बहुत ही दुखदायक घटना है और हमारे सभी के लिए दुखदायक घटना है, सो हम संवेदना प्रकट करते हैं। और दूसरा, जो भी पंजाब में नशे का काम करेगा या किसी के खिलाफ कोई पर्सनल काम करेगा तो उसके खिलाफ हम सख्त एक्शन लेंगे।
6: ਅੱਲੇ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਬਿਲਕੁਲ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਸਮਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲੀ ਹੋਈ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਨਸ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਆ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋਸ਼ ਤੇ ਹੋਸ਼ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਆ ਜਿੰਨਾ

मीडिया के माध्यम से ही इस केस के बारे में पता लगता है, और तब तक तो ये भी नहीं पता था कि इस केस में प्रोफेसर बिमोल शामिल है। तब एबीवीपी ने इसके खिलाफ में प्रदर्शन शुरू किया था।

0: Congress questioning the timing of the appointment. The Uttarakhand government says that arrests were made within 24 hours and that all three convicts were sentenced to life imprisonment back in 2025. But a fresh CBI case was filed earlier this year to probe the alleged VIP angle as far as this Ankita Bhandari case is concerned. Akhil Jameel has been tracking all the angles for us and this probe very closely. Listen into his reports.
1: कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता राहुल गांधी जी आपसे आए मिले, क्या कुछ बात हुई?
2: देखो, यहाँ पे कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष के नेताजी राहुल जी मिले और प्रियंका गांधी जी मिले हमें। उन्होंने कहा जो भी मदद होगी, जो भी सहयोग होगा, हम आपको पूरा सहयोग करेंगे। और मेन हमारा यहाँ पे दिल्ली आने का मेन मकसद ये था कि अगर हम अपने उत्तराखंड से आवाज़ उठाते तो वो सोशल मीडिया में कम ही भारत के कोने कोने जाती, इसलिए हमें दिल्ली आना पड़ा। जिस व्यक्ति को जेल के सलाखों के पीछे होना था, वो व्यक्ति आज सिक्किम का राज्यपाल सरकार ने नियुक्त कर दिया। और हमने कहा कि हम अब सीधा दिल्ली चलेंगे और दिल्ली में धरना प्रदर्शन करेंगे और महामहिम राष्ट्रपति महोदय से बिना निवेदन करेंगे कि जो व्यक्ति मेरी बेटी अंकिता भंडारी का वीआईपी है, उसका एसआईटी द्वारा जांच नहीं की गई, वो व्यक्ति आज सिक्किम का राज्यपाल कैसे हो सकता है? 8 महीने से सीबीआई की जांच नहीं हुई, वो केवल दिखाने के लिए, जनता को दिखाने के लिए कि हमने 2 फरवरी 2026 से सीबीआई की जांच शुरू कर दी, लेकिन नहीं हुई।
1: जो न्याय प्रणाली है उस पर कितना आपको विश्वास है, भरोसा है कि आपकी बेटी को इंसाफ मिलेगा?
3: 4 साल से रो रहे हैं हम कि हमें न्याय दो, मेरे बेटे निर्दोष थी और उसके साथ इतना कुछ हुआ। सरकार ने हमें हमेशा भरोसा दिलाया कि आपके साथ न्याय होगा, न्याय होगा, लेकिन हर बार हमारे जख्मों पे नमक छिड़का गया कि हर बार कभी उसके सपूत मिटाए गए, कभी मतलब जो ये वकील है अपने मतलब अपने सरकार द्वारा जो वकील था, वकील ने भी मतलब हमारे केस को ख़राब करने की कोशिश की। उसके बाद आप देख ही रहे हो कि जो बलात्कारी है उसको राज्यपाल घोषित कर रहे हैं, तो ये तो कितनी बड़ी दुख की बात है कि बहुत बड़ी दुख की बात है हमारे लिए।
4: हैरानी की बात यह है, आप कठुआ से शुरू कीजिए, हाथरस पे आइए, बिल्किस बानो पर आइए, ब्रिजभूषण शरण सिंह पर आइए और अब दुष्यंत कुमार पर आइए, दुष्यंत कुमार गौतम पर आइए। हर जगह भारतीय जनता पार्टी आरोपी के साथ खड़ी हुई मिलेगी। जो बलात्कार का विक्टिम है, मॉलेस्टेशन का विक्टिम है, जिसका मर्डर हो गया, उसके साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई नहीं नजर आ
1: सकती। He is being shielded by whom?
4: Well, who else do you think will shield him? The topmost people, Mr. Narendra Modi and Mr. Amit Shah are the only ones shielding. इस सरकार में और किसी की चलती है क्या? यही तो दो हैं जिनकी चलती। अब हमें यह समझना है कि किसका दबाव है, कौन किसे ब्लैकमेल कर रहा है कि आपको आनन फानन में इन्हें लाट साहब बनाना पड़ गया, गवर्नर बनाना पड़ गया। किसी का दबाव होगा, किसी को बचाना होगा, कहीं कोई ब्लैकमेल हो रहा होगा, कारण क्या है?
0: सौम्या जायसवाल ट्रैकिंग द लेटेस्ट डेवलपमेंट्स फॉर अस, जॉइंस अस लाइव एट द मोमेंट। Soumya, we're given to understand that Ankita Bhandari's parents have been released after detention at 5 a.m. this morning. But Ankita's father has now issued quite an ultimatum to the government.
5: Yes, this is the latest development. Since yesterday late evening, Ankita Bhandari's parents sat on a protest here in the national capital at India Gate. They were joined by women's rights activist Yogita Bhayana and later on also by LOP Rahul Gandhi, Priyanka Gandhi and several other senior leadership of Congress and Congress workers. They were detained late last night around 3:34 a.m. and released half an hour later. As of now, the details with regards to their protest is that they have been incessantly demanding that the appointment of Dushyant Kumar Gautam as the governor of Sikkim should be put on hold, because since last year of December, this VIP angle has been doing the rounds when certain audio clips and video clips came out in the forefront, which suggested that the person named Gattu in those video clips and audio clips were about Dushyant Kumar Gautam. So the VIP angle has been doing the rounds since December of 2025, and now there is a CBI probe underway. So the parents of Ankita Bhandari, through this protest, have been demanding that his appointment as the governor of Sikkim should be put on hold until unless the CBI probe in this particular case has been done. So these are the details that we're picking up.
0: Amma, we'll of course continue to track how this case progresses. Thanks so much for joining us. All right, let's turn our attention to the latest coming in from Punjab currently. This video you're about to see is from Patiala. It appears to show a minor driving a Toyota Innova and allegedly hitting several vehicles. Now, the person recording the footage says he began filming because he feared the vehicle might hit him. This footage is circulating on social media now. But you must note, at this stage, the circumstances of the incident, the extent of any damage caused, and whether the police have identified the driver remain to be established. But a dramatic video that is now viral from Punjab's Patiala, it appears to show a minor driving an Innova and allegedly hitting several vehicles. Just take a look at this clip playing out on your screens. A minor is driving this vehicle, mind you. The person recording the footage says he began filming because he feared that the vehicle might hit him. This clip is now viral, but the circumstances of the incident, whether the police have identified the driver, and the extent of the damage caused, these are matters that are yet to be established by investigators. All right, from Punjab now, let's turn our attention to West Bengal, where at least three motorcycles reportedly skidded on Kolkata's Chingrighata flyover after decorative Alpona artwork was painted on the road ahead of Durga Puja. Now, we're told that these incidents occurred around noon yesterday as rain made the surface wet. But a video showing bikers losing control is now circulating on social media. And Agni Mitrapol from Bengal says that the paint used was anti-skid, describes the artwork as a temporary celebration of Bengali cultural heritage. But crucially, the concern is, was the particular surface that you are seeing these motorcycles skid on, was it safe for two-wheelers in the rain? Was it grip tested under wet conditions? Listen into these reactions before we get in a lowdown with my colleague Hrithik Mondal from Kolkata.
6: ये तो दुर्गा पूजा के लिए हम लोग रास्ते को रंग किए हैं, अल्पना दिए हैं। अल्पना तो हमारे बंगाली का एक ऐतिह्य है, और ये रास्ते का रंग ये पहली बार नहीं है, ये अमेरिका में है, आइसलैंड में है, बहुत सारे देश में है, और जो रंग हम लोग किए हैं वो एंटी स्किड कलर है। अब आज सुबह में एक मोटरसाइकिल स्किड हो गया, बारिश हो रहा था, और वो जाके धक्का लगा और एक जन को, वो भी गिर गया था। इस विषय को हम लोग बहुत ध्यान से देख रहे हैं, और हमारे जो केएमडीए का इंजीनियर्स वो ऑलरेडी वो जगह में पहुंचे हैं, हमारे सीपी कलकत्ता, हमारे डीजी पुलिस वेस्ट बंगाल डीजी, और हमारे अनुज शर्मा जी जो डीजी है फायर का, वो भी आज गए हैं। वो कोई कोई बोल रहे हैं कि कलर्स है उसमें थोड़ा सा आंखों में ऐसे हो रहे हैं, जिटरी हो रहे हैं, और कोई कोई बोल रहे हैं कि बारिश में स्किड हुआ, जो भी है वो पुलिस देख रहे हैं।
7: দেখুন কিছু জায়গায় সাজানো হয়েছে আলপনা ইত্যাদিতে, স্কিড হয়েছে বৃষ্টি হওয়ার জন্য, এখন ওইটার কি অন্য কোনো কারণে স্কিড হয়েছে এটা সরকারের নজরে আছে, কালকে আলোচনাও হয়েছে, এটা বিচার করে দেখা হবে।
0: My colleague Hrithik Mondal is tracking the latest details for us. He joins us live at the moment. Hrithik, are we aware whether this flyover was tested for skid resistance, as Agni Mitrapol claims that there was anti-skid paint used? And who signed off on the fact that the road was fit for use?
8: Let me break it down. What exactly happened ahead of Durga Puja? The entire city is being decked up with several festivity mood, and it was a major part of this new look of this Kolkata in two busiest flyovers, that includes Chingrighata flyover and Goriad flyover, where the KMDA painted in multiple colors, and the minister, the Agni Mitrapol, who chairs the who heads the Urban Development Ministry, she herself, you know, oversee the entire process the days before the Durga Puja to begin. But yesterday afternoon, it was drizzling, and it was the first time the Chingrighatta area, the metropolitan area, was witnessing, you know, a drizzling shower, and which is why possibly we did see that the bikers, they skidded, and, you know, the three bikers at least faced, you know, accident. And on social media, many

0: code of conduct लगाया हुआ है.
1: Going beyond what's said, getting to the reality behind the rhetoric.
0: Any one message of unity.
2: हमारे सामी जाके जब हम हत्या कर लेता तो फांसी दवा तो ची.
0: Also the police action.
1: Taking questions where they matter most.
3: The question is language की हम बात करें.
1: Urgent, exact, empathetic.
0: There is no fire escape. There is no alternative safety route.
1: Because when it really matters, someone has to answer. The buck stops here. Weekdays, 8 p.m. only on NDTV. When it really matters.
4: Hindustan mile, Hindustan se.
5: देश का टायर, जेके टायर.
6: सेनको से मेरा नाता सालों पुराना है. ये मेरे लिए बस एक ब्रांड नहीं है, ये है एक लेगेसी.
7: यू नो डिजाइन्स कितने हैं? लाख से भी ज्यादा डोज
8: और सारे हैं BIS हॉलमार्क सर्टिफाइड. खूबसूरत कारीगरी भी, हाई क्वालिटी भी.
9: एक परिवार, अटूट भरोसा.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: सबका राजा प्योर मसाला।
5: The only female bassist to be ranked among Music Radar's top 10 bassists of the 21st century. From India to the world stage, Mohini Day has made the bass her voice. Meet her at the NDTV World Summit, A World Between Orders, 22nd and 23rd October, New Delhi.
6: प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी, एवरीडे।
7: अ वर्डिक्ट कैन चेंज अ बिजनेस, अ लॉ कैन रीशेप एन इंडस्ट्री, अ रेगुलेशन कैन क्रिएट एन अपॉर्चुनिटी और अ रिस्क, बिकॉज़ व्हाट हैपेंस इन कोर्ट्स कुड हैव अ डायरेक्ट इंपैक्ट ऑन योर बिजनेस। जॉइन मी एज आई डीकोड व्हाट लीगल डिसीजंस मीन फॉर मार्केट्स, बिजनेसेस एंड इन्वेस्टमेंट्स। क्लोजिंग आर्ग्यूमेंट Only on NTV Profit.
6: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट, सेहतमंद, हर रोज।
5: The sharpest global voices decode a world between orders. Dr. Swarnim Wagle, General David Petraeus, Swami Sarvapriyananda, Mike Walsh, Nicholas Butts, at the NDTV World Summit, A World Between Orders, 22nd and 23rd October, only on NDTV.
8: When others are warming up, I'm raring to go. The stories that matter, the stories that shape your life.
9: Hello and welcome to Watching Prime 5 with me, Raisha Sehgal. What's happening?
8: The show that sets the prime time agenda.
9: We'll be deep diving into this topic to tell you what's at stake.
8: Join me, Raisha Sehgal, on Prime 5, weekdays at 5 p.m. only on NDTV, when it really matters.
5: This is a world between orders. Uncertain. Unwritten. As global equations shift, Prime Minister Narendra Modi will lead the conversation at the NDTV World Summit 2026 to decode the shifts, redraw possibilities. NDTV World Summit 2026, A World Between Orders, 22nd and 23rd October, New Delhi.

0: All right, you must note, meanwhile, that the Supreme Court is expected to take up the opposition's challenge to the Election Commission's SIR exercise today. And at stake is not simply a dispute between opposition and the poll body, but the integrity of a process that determines who gets to vote in our country. This petition was filed by Rahul Gandhi on Monday. It was due to be taken up after 14 clerical errors were pointed out by the top court for correction. But Rahul Gandhi and other opposition leaders, they want the court to actually investigate and examine how key SIR decisions were taken, including objections reportedly raised by election commissioners Sukhbir Singh Sandhu and Vivek Joshi. So the core question is whether the commission's own records support the allegation that key decisions were taken unilaterally and that the other two election commissioners were deliberately kept out of the loop. And also crucially, whether the safeguards against wrongful deletion are adequate. This comes after Rahul Gandhi and Congress party workers marched to the Supreme Court earlier this week on Monday to file the petition in the Supreme Court. And crucial to note that tomorrow is the last working day before the court closes for the Dussehra holidays for the whole of next week. So all eyes are on what will actually be heard today and what, if anything, the court directs before the recess. All right, on that note, let's turn our attention now to the latest we're tracking regarding the NSUI woman's complaint and what she has said on record regarding the Delhi police. Well, let's begin with the updates regarding Delhi police. The Delhi police has filed an FIR against women workers of the National Students Union of India in connection with a bus assault case. The Delhi police has alleged that NSUI workers have brutally assaulted women constable, and this FIR has been registered on the basis of the woman constable's complaint. The constable has alleged that she was assaulted by the NSUI workers, and this case comes amid the detention of NSUI activists during a protest, and also of one activist saying on record that she was brutally beaten up by police personnel.
1: When they detain us, there is no police officers in the bus. So I just asked, where is lady constable? If they want to detain us, there is mandatory at least 8 lady constable. Then the bus moved and stopped Cannot Place. Cannot Place, friend of Cannot Place police station. Udhar, there is Chanjal. Chanjal Yadav and other teen or child police officers went in the bus and dragged me in the road. And also there is a SHO in Cannot Place police station. He told me, the lady police officer, taken away to basement. There is no CCTV, you can do anything. So they punch me here. Mera, leave. And continuously beaten my pura cheek. There is, my eye also have some problem and ear had some problem.
2: She's lost her hearing in 1 year. Okay? She's deaf in 1 year. Because she's been beaten in that year, she cannot hear anymore. Last time I showed you a boy who's blinded in one eye. Now she's deaf in 1 year. Just so that you know. So, ye main special introduction karna chahta hu. Ye sherni hai. Ye sherni hai. Jaan rahe usko? Ye sherni hai. इसको मारा, कोई डर नहीं लगा? डर लगा?
3: नहीं लगा सर। हाँ? नहीं लगा, नहीं लगा।
2: नफरत थी दिल में?
3: नफरत नहीं थी, प्रेम था। जितना मारा हमने ये बोला, खुला आज मन जितना है उतना भर के मारो।
0: All right, let's switch tracks now. Around 4 a.m. this morning, Delhi police detained Ankita Bhandari's parents and several opposition leaders during a sit-in stir at India Gate. They were released an hour later at around 5 a.m. But the Congress is alleging police manhandling and demanding justice now. This is 4 years after 19-year-old Ankita Bhandari was murdered in Uttarakhand. Her parents have now brought their fight to Delhi. They have appealed to the president to halt Dushyant Kumar Gautam's appointment as the governor of Sikkim until the CBI completes its probe into the alleged VIP angle as far as this case is concerned. You see, Gautam was named the governor a day before the protest, and leader of opposition in the Lok Sabha, Rahul Gandhi, had joined the protest, with the Congress party questioning the timing of the appointment. The Uttarakhand government, on the other hand, says that arrests were made within 24 hours and all three convicts were sentenced to life imprisonment back in 2025. But a fresh CBI case was filed earlier this year to probe the alleged VIP angle. Akhil Jameel brings us more on this.
4: कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता राहुल गांधी जी आपसे आए मिले, क्या कुछ बात हुई?
5: देखो यहाँ पे कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष के नेताजी राहुल जी मिले और प्रियंका गांधी जी मिले हमें। उन्होंने कहा जो भी मदद होगी, जो भी सहयोग होगा, हम आपको पूरा सहयोग करेंगे। और मेन हमारा यहाँ पे दिल्ली आने का मेन मकसद ये था कि अगर हम अपने उत्तराखंड से आवाज़ उठाते तो वो सोशल मीडिया में कम ही भारत के कोने कोने जाती, इसलिए हमें दिल्ली आना पड़ा। जिस व्यक्ति को जेल के सलाखों के पीछे होना था, वो व्यक्ति आज सिक्किम का राज्यपाल सरकार ने नियुक्त कर दिया। और हमने कहा कि हम अब सीधा दिल्ली चलेंगे और दिल्ली में धरना प्रदर्शन करेंगे और महामहिम राष्ट्रपति महोदय से बिना निवेदन करेंगे कि जो व्यक्ति मेरी बेटी अंकिता भंडारी का वीआईपी है, उसका एसआईटी द्वारा जांच नहीं की गई, वो व्यक्ति आज सिक्किम का राज्यपाल कैसे हो सकता है? 8 महीने से सीबीआई की जांच नहीं हुई, वो केवल दिखाने के लिए, जनता को दिखाने के लिए कि हमने 2 फरवरी 2026 से सीबीआई की जांच शुरू कर दी, लेकिन नहीं हुई।
4: जो न्याय प्रणाली है उस पर कितना आपको विश्वास है, भरोसा है कि आपकी बेटी को इंसाफ मिलेगा?
6: 4 साल से रो रहे हैं हम कि हमें न्याय दो, मेरे बेटे निर्दोष थी और उसके साथ इतना कुछ हुआ। सरकार ने हमें हमेशा भरोसा दिलाया कि आपके साथ न्याय होगा, लेकिन हर बार हमारे जख्मों पे नमक छिड़का गया कि हर बार कभी उसके सपूत मिटाए गए, कभी मतलब जो ये वकील है अपने सरकार द्वारा जो वकील था, वकील ने भी मतलब हमारे केस को ख़राब करने की कोशिश की। उसके बाद आप देख ही रहे हो कि जो बलात्कारी है उसको राज्यपाल घोषित कर रहे हैं, तो ये तो कितनी बड़ी दुख की बात है कि बहुत बड़ी दुख की बात है हमारे लिए।
7: हैरानी की बात यह है, आप कठुआ से शुरू कीजिए, हाथरस पे आइए, बिल्किस बानो पर आइए, ब्रिजभूषण शरण सिंह पर आइए और अब दुष्यंत कुमार गौतम पर आइए। हर जगह भारतीय जनता पार्टी आरोपी के साथ खड़ी हुई मिलेगी। जो बलात्कार का विक्टिम है, मॉलेस्टेशन का विक्टिम है, जिसका मर्डर हो गया, उसके साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई नहीं नजर आ
4: सकती। इज बीइंग शील्डेड बाय हू?
7: वेल, हु एल्स डू यू थिंक विल शील्ड हिम? द टॉप मोस्ट पीपल, मिस्टर नरेंद्र मोदी एंड मिस्टर अमित शाह आर द ओनली वन शील्डिंग। इस सरकार में और किसी की चलती है क्या? यही तो दो हैं जिनकी चलती। अब हमें यह समझना है कि किसका दबाव है, कौन किसे ब्लैकमेल कर रहा है कि आपको आनंद फानन में इन्हें लाट साहब बनाना पड़ गया, गवर्नर बनाना पड़ गया। किसी का दबाव होगा, किसी को बचाना होगा, कहीं कोई ब्लैकमेल हो रहा होगा, कारण क्या है?
0: Alright, let's turn our attention now to the latest details coming in this morning. BJP women MPs are seeking the president's intervention over the sexual harassment allegations against Agomcha Bimal Akoijam, a former JNU professor who was dismissed by the university after that internal inquiry that we have been reporting on. But the Delhi police has also registered an FIR and summoned him to join the investigation. And this case involves allegations by female students. The findings of a university inquiry and internal committee, female students have said on record that he would misbehave during viva examinations, there were demands for sexual favors and inappropriate behavior while his time as a professor at the JNU University. This investigation, though, is still underway. Akoijam has denied the allegations and challenged the university's action as well. Aishwarya Jain, tracking the latest for us, joins us live at the moment. Aishwarya, breakdown for us to begin with. How many complaints were examined? What really did the JNU internal committee conclude? And then tell us the BJP MP's plan today as well.
8: Well, as per the claims of Bharatiya Janata Party, the internal committee that was constituted by the Jawaharlal Nehru University, who investigated into the entire matter, had found guilty and they ultimately suspended the Congress Manipur MP and the JNU professor as far as the university rules and guidelines are concerned. And then only it was the Bharatiya Janata Party, after Mr. Bimal being suspended from the Jawaharlal Nehru University, escalated the attacks. The Bharatiya Janata Party, remember, women MPs, Mahila Mocha, Karyakartas protested on the streets of National Capital. They tried to get out the AICC headquarters and demanded, demanded from Rahul Gandhi that he should expel Mr. Bimal from the primary membership of the Congress party and also to expel him as the MP as well. Later we saw the delegation going to the Rashtrapati Bhavan, submitting a memorandum. And now finally they will be meeting the Lok Sabha Speaker Om Birla at his chambers at around 10 a.m. is what we have been told. Sixth MP delegation, which will be headed by D. Purandeshwari, will be heading to the parliament, and they will be seeking from the Lok Sabha Speaker termination of the membership of Mr. Bimal, as these are grave and serious allegations. Now remember, on the same day, it is at Delhi Police Vasan Kunj Police Station, Bimal have been sent notice to appear physically so that his statement can be recorded, and there could be further investigation that should begin.
0: Aishwarya, as always, thanks so much for joining us with the lowdown and taking us through what to expect. We will, of course, revert to you for regular updates. So, major political storm over allegations of sexual harassment at JNU, with the former JNU professor and Congress MP Bimal Okoyejam being summoned by the Delhi police to join the probe and present his side now. This case follows complaints by female students and an internal inquiry that led to his dismissal from the university after allegations included lewd remarks in class, demands for sexual favors, and misconduct during viva examinations. Mr. Okoyejam has dismissed the charges as a total witch hunt. Meanwhile, the BJP has taken the matter to the National Commission for Women, with the ABVP staging protests on campus and questioning the Congress leadership's silence. You must note that the NCW says it will take cognizance of the representation and also decide on the next course of action.
9: जांच में सही पाने के बाद उसको वहां से बर्खास्त तो किया गया है, लेकिन कांग्रेस के संरक्षण में या कांग्रेस के नेताओं ने अभी तक उसके बारे में एक शब्द कुछ नहीं बोला, क्योंकि वो व्यक्ति बहुत प्रभावशाली है, कांग्रेस पार्टी का उसको संरक्षण प्राप्त है। तो जो हमारी बच्चियां जिन्होंने इतनी हिम्मत के साथ इस बात को सामने लाई हैं, अब चूंकि उसी कॉलेज में वो अध्ययनरत हैं, तो निश्चित रूप से उन बच्चियों का संरक्षण, उनकी सुरक्षा, भविष्य में उनको किसी भी तरह की नुकसान न हो, इसका भी संज्ञान लेने की आवश्यकता है। और जो देश के पवित्र सदन लोकसभा का सांसद है, नियमानुसार कांग्रेस को तो अपने पार्टी से उसको तत्काल में बर्खास्त करना चाहिए था, हमारी उन युवतियों की सुरक्षा और उनके सम्मान को की चिंता करते हुए, लेकिन उसने अभी तक अपने पार्टी से भी बर्खास्त नहीं किया है।
10: भाजपा महिला मोर्चा और उसी के साथ साथ राज्यसभा की और लोकसभा की सांसदों द्वारा निवेदन प्राप्त हुए हैं। उसमें उन्होंने ये कहा है कि जेएनयू के जो प्रोफेसर है, जो सांसद भी है, उनके खिलाफ सेक्सुअल हैरासमेंट के अनेक आरोप है, और उनके बारे में आज उनके खिलाफ उन्होंने हमें यहाँ पे निवेदन दिया है। कमीशन का जो मैंडेट है, उस मैंडेट को ध्यान में रखते हुए कमीशन इन विषयों का संज्ञान लेगा और उसी के साथ साथ उचित निर्णय भी करेगा।
11: 11 से अधिक छात्राओं ने आईसी में प्रोफेसर बिमोल के खिलाफ सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस फाइल किया था, और जैसे विशाखा गाइडलाइन के अकॉर्डिंग 90 दिनों के अंदर उस केस पे रिजोल्यूशन कुछ ना कुछ आ जाना चाहिए था, लेकिन सितंबर का महीना आ गया था और कोई उस पर कार्रवाई तक नहीं हुई थी। तो एबीवीपी को मीडिया के माध्यम से ही इस केस के बारे में पता लगता है, और तब तक तो ये भी नहीं पता था कि इस केस में प्रोफेसर बिमोल शामिल है। तब एबीवीपी ने इसके खिलाफ में प्रदर्शन शुरू किया था, बाद में पता चलता है कि प्रोफेसर बिमोल है, तो हम लोगों ने प्रदर्शन में पुतला दहन करना, मार्च निकालना, क्लास टू क्लास कैंपेन, मैस कैंपेन, जितना हो सकता है उस तरीके का विरोध हमने प्रदर्शन किया, और तब जाके इस पे प्रोसीडिंग हुई है आईसी की। और अक्टूबर के मंथ में, अभी कुछ दिन पहले ही, आईसी की जो प्रोसीडिंग की रिपोर्ट आती है, और उसमें प्रोफेसर बिमोल को गिल्टी माना जाता है, गिल्टी प्रूव होते हैं वो।
12: He himself admitted that he has 15 cases on him about sexual harassment. He has harassed 11 girls inside the campus of JNU, inside the classrooms, inside the four walls of the classrooms, and he is roaming around in no

0: was Boats Club. Then it was shifted to this place. Now three other places are being given. Why are they given? Because it is going to be far away. The issue is, why is the government against anyone protesting? A right to protest, Supreme Court has upheld it. So as long as there is no violence as such, protest should be allowed. And these boys have been arrested today. It was not at all necessary to arrest them. Under BNSS, they could have been easily given bail in the police station itself.
1: Well, the Supreme Court is expected to take up the opposition's challenge to the Election Commission's special intensive revision of electoral rolls today. Now, at stake is not simply a dispute between the opposition and the poll body, but the integrity of a process that determines who gets to vote in our country. The petition filed by Rahul Gandhi on Monday was due to be taken up after 14 clerical errors were pointed out by the top court for correction. Now, Rahul Gandhi and other opposition leaders, they want the court to examine how key SIR decisions were actually taken, including objections reportedly raised by election commissioners Sukhbir Singh Sandhu and Vivek Joshi. You see, the core question is whether the commission's own records support the allegation that key decisions were taken unilaterally and that other two election commissioners, Mr. Joshi and Mr. Sandhu, were kept out of the loop deliberately, and crucially, whether the safeguards against wrongful deletion are adequate. This comes after Rahul Gandhi and Congress Party workers marched to the Supreme Court on Monday to file this petition. And crucial to note that tomorrow is the last working day before the court closes for Dussehra holidays for the whole of next week. So all eyes are on what will actually be heard today and what, if anything, the court directs before the recess. All right, on that note, let's turn our attention to the Delhi police filing an FIR against women workers of the National Students Union of India in connection with a bus assault case. Delhi police has alleged that NSUI workers have brutally assaulted women constable. The FIR has been registered on the basis of the woman constable's complaint, I beg your pardon. The constable has alleged that she was assaulted by NSUI workers. Meanwhile, a zero FIR has been registered by the Keralam police over allegations of assault on a woman NSUI leader in Delhi. In fact, you know, about that zero FIR that's been filed in Keralam, I'm just going to point out a few details. A 26-year-old DU student from Kozhikode has detailed that she was dragged from a bus, she was punched, she was kicked in her lower abdomen, her private parts were kicked as well. Listen in to her entire tragic ordeal.
2: She's lost her hearing in 1 year. Okay? She's deaf in 1 year. Because she's been beaten in that year, she cannot hear anymore. Last time I showed you a boy who's blinded in one eye. Now she's deaf in 1 year. Just so that you know.
1: On that note, let's turn our attention now to the major political storm over allegations of sexual harassment at JNU. Former JNU professor Bimal Okoyajam has been summoned by Delhi police to join the probe and present his side. This case follows complaints by female students and an internal inquiry that led to his dismissal from the university. These allegations include demands for sexual favors, lewd remarks in the classroom, inappropriate conduct during viva examination. And Mr. Goyjam has dismissed the charges as a witch hunt. Meanwhile, the BJP has taken up the matter to the National Commission for Women, with ABVP staging protests on campus and also questioning the Congress leadership's silence regarding the matter. The NCW says it will take cognizance of the representation and decide on the next course of action.
3: जांच में सही पाने के बाद उसको वहां से बर्खास्त तो किया गया है, लेकिन कांग्रेस के संरक्षण में या कांग्रेस के नेताओं ने अभी तक उसके बारे में एक शब्द कुछ नहीं बोला, क्योंकि वो व्यक्ति बहुत प्रभावशाली है, कांग्रेस पार्टी का उसको संरक्षण प्राप्त है। तो जो हमारी बच्चियां जिन्होंने इतनी हिम्मत के साथ इस बात को सामने लाई हैं, अब क्योंकि उसी कॉलेज में वो अध्ययनरत हैं, तो निश्चित रूप से उन बच्चियों का संरक्षण, उनकी सुरक्षा, भविष्य में उनको किसी भी तरह की नुकसान न हो, इसका भी संज्ञान लेने की आवश्यकता है। और जो देश के पवित्र सदन लोकसभा का सांसद है, नियमानुसार कांग्रेस को तो अपने पार्टी से उसको तत्काल में बर्खास्त करना चाहिए था, हमारी उन युवतियों की सुरक्षा और उनके सम्मान को की चिंता करते हुए, लेकिन उसने अभी तक अपने पार्टी से भी बर्खास्त नहीं किया है।
4: भाजपा महिला मोर्चा और उसी के साथ साथ राज्यसभा की और लोकसभा की सांसदों द्वारा निवेदन प्राप्त हुए हैं। उसमें उन्होंने ये कहा है कि जेएनयू के जो प्रोफेसर है, जो सांसद भी है, उनके खिलाफ सेक्सुअल हैरासमेंट के अनेक आरोप है और उनके बारे में आज उनके खिलाफ उन्होंने हमें यहां पे निवेदन दिया है। कमीशन का जो मैंडेट है, उस मैंडेट को ध्यान में रखते हुए कमीशन इन विषयों का संज्ञान लेगा और उसी के साथ साथ उचित निर्णय भी करेगा।
5: 18 से अधिक छात्राओं ने आईसी में प्रोफेसर बिमोल के खिलाफ सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस फाइल किया था और जैसे विशाखा गाइडलाइन के अकॉर्डिंग 90 दिनों के अंदर उस केस पे रिजोल्यूशन कुछ ना कुछ आ जाना चाहिए था, लेकिन सितंबर का महीना आ गया था और कोई उस पर कार्रवाई तक नहीं हुई थी। तो एबीवीपी को मीडिया के माध्यम से ही इस केस के बारे में पता लगता है और तब तक तो ये भी नहीं पता था कि इस केस में प्रोफेसर बिमोल शामिल है। तब एबीवीपी ने इसके खिलाफ में प्रदर्शन शुरू किया था, बाद में पता चलता है कि प्रोफेसर बिमोल है, तो हम लोगों ने प्रदर्शन में पुतला दहन करना, मार्च निकालना, क्लास टू क्लास कैंपेन, मैस कैंपेन, जितना हो सकता है उस तरीके का विरोध हमने प्रदर्शन किया और तब जाके इस पर प्रोसीडिंग हुई है आईसी की। और अक्टूबर के मंथ में अभी कुछ दिन पहले ही आईसी की जो प्रोसीडिंग की रिपोर्ट आती है और उसमें प्रोफेसर बिमोल को गिल्टी माना जाता है, गिल्टी प्रूव होते हैं वो।
6: He himself admitted that he has 15 cases on him about sexual harassment. He has harassed 11 girls inside the campus of JNU, inside the classrooms, inside the four walls of the classrooms, and he is roaming around in no dissent. No regret, nothing at all.
1: Meanwhile, around 4 a.m. today, Delhi police detained Ankita Bhandari's parents and several opposition leaders during a sit and stir at India Gate. They were released an hour later at 5 a.m., with the Congress alleging police manhandling and demanding justice. 4 years after 19-year-old Ankita Bhandari was murdered in Uttarakhand, her parents have taken their fight to Delhi. They are appealing to the president to halt Dushyant Kumar Gautam's appointment as the governor of Sikkim until the CBI completes its probe into the alleged VIP angle. Gautam was named the governor a day before the protest and Rahul Gandhi has joined the protest, with Congress questioning the timing of the appointment. The Uttarakhand government, meanwhile, says arrests were made within 24 hours and all three convicts were sentenced to life imprisonment back in 2025. But you know, a fresh CBI case was filed earlier this year to probe the alleged VIP angle. Let's now listen in to the reactions from the protesters, including Ankita's parents, as captured by my colleague, Akhil Jameel.
7: कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता राहुल गांधी जी आपसे आए, मिले, क्या कुछ बात हुई?
8: देखो, यहाँ पे कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष के नेताजी राहुल जी मिले और प्रियंका गांधी जी मिले हमें। उन्होंने कहा जो भी मदद होगी, जो भी सहयोग होगा, हम आपको पूरा सहयोग करेंगे। और मेन हमारा यहाँ पे दिल्ली आने का मेन मकसद ये था कि अगर हम अपने उत्तराखंड से आवाज़ उठाते तो वो सोशल मीडिया में कम ही भारत के कोने कोने जाती, इसलिए हमें दिल्ली आना पड़ा। जिस व्यक्ति को जेल के सलाखों के पीछे होना था, वो व्यक्ति आज सिक्किम का राज्यपाल सरकार ने नियुक्त कर दिया। और हमने कहा कि हम अब सीधा दिल्ली चलेंगे और दिल्ली में धरना प्रदर्शन करेंगे और महामहिम राष्ट्रपति महोदय से बिना निवेदन करेंगे कि जो व्यक्ति मेरे बेटे अंकिता भंडारी का वीआईपी है, उसका एसआईटी द्वारा जांच नहीं की गई, वो व्यक्ति आज सिक्किम का राज्यपाल कैसे हो सकता है? 8 महीने से सीबीआई की जांच नहीं हुई, वो केवल दिखाने के लिए, जनता को दिखाने के लिए कि हमने 2 फरवरी 2026 से सीबीआई की जांच शुरू कर दी, लेकिन नहीं हुई।
7: जो न्याय प्रणाली है उस पर कितना आपको विश्वास है, भरोसा है कि आपकी बेटी को इंसाफ मिलेगा?
9: चार साल से रो रहे हैं हम कि हमें न्याय दो, मेरे बेटे निर्दोष थी और उसके साथ इतना कुछ हुआ। सरकार ने हमें हमेशा भरोसा दिलाया।

0: शुरू कीजिए, हाथरस पे आइए, बिल्किस बानो पर आइए, ब्रिजभूषण शरण सिंह पर आइए और अब दुष्यंत कुमार पर आइए, दुष्यंत कुमार गौतम पर आइए। हर जगह भारतीय जनता पार्टी आरोपी के साथ खड़ी हुई मिलेगी। जो बलात्कार का विक्टिम है, मॉलेस्टेशन का विक्टिम है, जिसका मर्डर हो गया, उसके साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई नहीं नजर आती।
1: इज बीइंग शील्डेड बाय होम
0: वेल हु एल्स कैन हु एल्स डू यू थिंक विल शील्ड हिम द टॉप मोस्ट पीपल मिस्टर नरेंद्र मोदी एंड मिस्टर अमित शाह द ओनली वन शील्डिंग इस सरकार में और किसी की चलती है क्या? यही तो दो हैं जिनकी चलती। अब हमें यह समझना है कि किसका दबाव है, कौन किसे ब्लैकमेल कर रहा है कि आपको आनंद फानन में इन्हें लाट साहब बनाना पड़ गया, गवर्नर बनाना पड़ गया। किसी का दबाव होगा, किसी को बचाना होगा, कहीं कोई ब्लैकमेल हो रहा होगा। कारण क्या है?
2: ऑलराइट, ऑन दैट नोट वी आर स्लिपिंग इनटू अ वेरी क्विक कमर्शियल ब्रेक, बट while we gather the latest updates for you, you must note winter is knocking on the doors of the Himalayas with the season's first snowfall in the higher reaches of Manali and Kashmir. In fact, in Himachal Pradesh, the Rohtang Pass area has been receiving fresh snow over the past few days, turning the higher mountains white. Meanwhile, in Kashmir, in Gulmarg, Sonamarg and several high altitude passes, they have received the season's first snow, bringing down temperatures across the region. This fresh snowfall, as you can quite clearly tell, has brought a wintry charm to the mountains.

0: code of conduct लगाया हुआ है.
1: Going beyond what's said, getting to the reality behind the rhetoric.
0: Anyone message of unity.
2: हमारा स्वामी जाके जब भाव हत्या कर लेता तो फांसी दवा तो उची.
0: Also the police action.
1: Taking questions where they matter most.
0: The question is language की बात करें.
1: Urgent, exact, empathetic.
0: There is no fire escape. There is no alternative safety route.
1: Because when it really matters, someone has to answer. The buck stops here. Weekdays, 8 p.m. only on NDTV. When it really matters.
3: Hindustan mile, Hindustan se.
4: Desh ka tire, JK tire.
5: Har baar wahi gold jewelry kaise pehen sakti hu? पर इस जमाने में नई नई गोल्ड ज्वेलरी खरीदना भी तो इम्प्रैक्टिकल है. तो फिर सेनको का ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज.
6: एंजॉय करें 0% डिडक्शन किसी भी ज्वेलर के गोल्ड ज्वेलरी एक्सचेंज पर और खरीदें अपने पसंदीदा सेनको गहने.

0: seen even in the past that a chief minister would resign for the murder of a citizen. But this particular case has snowballed into a bigger controversy ahead of Punjab polls, because this person, the victim, Parvinder Singh, was known as an anti-crusader, drug crusader, who has been raising his voice against the drug abuse in Punjab, and in particular in the Mansa district here. And he was killed in broad daylight. He was attacked twice. The sequence of event is such that first he confronted his attacker, and when he ran away from there, he was attacked twice. So as of now, the situation is tense. There is no, there has been no conclusion of what will happen in future, though it is a one-day shutdown, a statewide shutdown. But we'll have to see that how government is going to tackle this ongoing crisis.
1: Yes, and like you mentioned, certainly a big flashpoint ahead of polls. Thank you for the moment, Ghazali. Let's tell our viewers that the murder of anti-drugs activist Parvinder Singh Jhota has triggered outrage across Punjab. Well, the murder of Parvinder Singh Jhota has triggered outrage, like I mentioned, across the state of Punjab. And this too, with just months to go for the Punjab elections. Also, a statewide Punjab Bandh is being observed today, which is led by Jhota's father, Bheem Singh, as well as a joint action committee. Protesters are demanding a central bureau investigation probe into the murder. Meanwhile, the opposition has launched a united attack on the Man government. Congress alleges police complicity, with the BJP now questioning the very collapse of law and order in the state, while the Akali Dal has backed the Bandh call and demanding the Chief Minister's resignation. So Chief Minister Bhagwant Mann, who is in the eye of storm over this case, Mann has assured the family that no culprit would be spared, promising the strictest action. Mann says that any conspiracy behind the murder will be investigated and that drug trafficking will not be tolerated in the state of Punjab.
2: ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟੇ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਨ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਡੀਜੀਪੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪੇ ਹੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਇਸ ਕਤਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੈਂਟਰਲ ਬਿਊਰੋ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ CBI ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ, ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
3: ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਮੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨੇ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਉਸਕੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਵੀ ਹੈਂਡ ਸੇ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਆਜ ਹਮਾਰੇ ਮਾਨਨੀਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ इसको लेके अपना बयान भी दिया है, स्टेटमेंट जारी करी है, और दोषियों के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज हो चुका है और उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। बिल्कुल, जो भी इलीगल काम पंजाब में करेगा उसके साथ हम सख्ती से पेश आएंगे। और दूसरा, मैं परमिंदर जी के परिवार के साथ संवेदना प्रकट करता हूँ, क्योंकि बहुत उनके परिवार के लिए बहुत ही दुखदायक घटना है और हमारे सभी के लिए दुखदायक घटना है। सो हम संवेदना प्रकट करते हैं। और दूसरा, जो भी पंजाब में नशे का काम करेगा या किसी के खिलाफ कोई पर्सनल काम करेगा तो उसके खिलाफ हम सख्त एक्शन लेंगे।
4: ਕੱਲੇ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਬਿਲਕੁਲ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਸਮਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲੀ ਹੋਈ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਨਸ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਆ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋਸ਼ ਤੇ ਹੋਸ਼ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਆ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਆ।
1: Let's cut across to the press briefing by the BJP on Neha Bora, the AISA president.
5: ਖਨ ਕਰਨੇ ਕੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਤਾ। ਦੂਸਰੀ, ਇਹ ਇਕਲੌਤਾ ਐਸਾ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕੇ ਸਾਥ ਮੇਂ ਇੱਕ ਜੁਆਇੰਟ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰੀ, ਵੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਇੱਕ ਟਵਿਟਰ ਸਪੇਸ ਪੇ ਯੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਵੋ ਚਾਹਤੇ ਹੈ ਕਿ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋ ਜਿਸਮੇ ਖੂਨ ਖਰਾਬੇ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਔਰ ਠੀਕ 24 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਉਸੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਕੋ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸਾਥ ਮੇਂ ਇੱਕ ਜੁਆਇੰਟ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਾਤੇ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਸੀਰੀਜ਼ ਆਫ ਪੈਟਰਨ ਵਿਚ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੈਟ ਦੀ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਆਫ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ democratic resistance. It is appropriation of anarchy. It is not democratic resistance. It is legitimization of anarchy. It is not democratic resistance. It's a fight against Indian state, Indian democracy. इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि जो भारत में लोकतंत्र में विश्वास रखता है वो राहुल गांधी और उनके इकोसिस्टम द्वारा भारत के लोकतंत्र और भारत की चुनी हुई लोकतंत्र की सरकार और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के मन में के प्रति भारत की जनता में झूठ के सहारे अविश्वास की भावना पैदा करने की एक साजिश रच रहे हैं। और देश की जनता ने अलग अलग चुनावों में जो अभी रीसेंट हुए हैं उसमें 80% से ज्यादा वोट डालकर, भले वो बैलेट से चुनाव हो या ईवीएम से चुनाव हो, भले वो त्रिपुरा में बायपोल हो या असम में बायपोल हो, हर जगह, भले वो यूथ का डूसू का चुनाव हो या चंडीगढ़ में यूथ का चुनाव हो, हर जगह इस देश का युवा राहुल गांधी की एनआरकी को रेजिस्ट कर रहा है और उसका विरोध कर रहा है। उसके बावजूद अगर राहुल गांधी की पोस्टर गर्ल बांग्लादेश जैसा आंदोलन भारत के अंदर करना चाहती है तो मैं आपसे सीधा सवाल पूछता हूं कि हम सब लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, क्या हर लोकतंत्र में विश्वास रखने वाला व्यक्ति क्या इसका विरोध नहीं करेगा? क्या हर व्यक्ति जो भारत के संविधान के अंदर विश्वास रखता है क्या वो इसके खिलाफ नहीं बोलेगा? और इसीलिए 10,000 की कांग्रेस के और लेफ्ट के कार्यकर्ताओं की भीड़ कनॉट प्लेस के आसपास लाने से देश का मंतव्य तय नहीं होता है। देश का मंतव्य दूर दराज गांव से तय होता है, देश के कोने कोने से तय होता है। और वही देश का कोना कोना कह रहा है नो टू एनआरकी, यस टू डेमोक्रेसी, नो टू कांग्रेस, यस टू कॉन्स्टिट्यूशन, नो टू राहुल गांधी, यस टू इंडियन डेमोक्रेसी। तो आज मैं हर व्यक्ति, हर युवा से कहना चाहता हूं कि हम सब भारत में, भारत के लोकतंत्र में विश्वास करने वाले लोग हैं। ये नेहा बोरा जिनके शब्द हैं, सोच विचार राहुल गांधी का है, ये भारत के अंदर एनआरकी को लेजिटिमाइज करना चाहते हैं और इसके बहाने अपने परिवार को सत्ता में लाना चाहते हैं। मैं राहुल गांधी को कहना चाहता हूं, जितना मेहनत अराजकता फैलाने में आप और आपका इकोसिस्टम लगा रहा है, अगर उतनी ताकत आप इस देश में जनता की सेवा करने में लगा रहे होते तो क्या पता 3-4 जगह कांग्रेस का वोट बढ़ जाता। पर राहुल गांधी ने पूर्व में कहा था, हिज फाइट इज नॉट अगेंस्ट द बीजेपी, हिज फाइट इज नॉट अगेंस्ट द आरएसएस आइडियोलॉजी, हिज फाइट इज अगेंस्ट द इंडियन स्टेट। और इंडियन स्टेट मीन्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब इंडियन डेमोक्रेसी। तो आज मैं हर पत्रकार बंधु से भी कहना चाहता हूं, जिसको कांग्रेस के लोग जो लोकतांत्रिक रूप से जमीन पर रिपोर्ट कर रहे हैं उनको कांग्रेस और उनके कार्यकर्ता घेर घेर कर उन पे दबाव और उनको प्रेशराइज करने का प्रयास कर रहे हैं कि आज हर व्यक्ति भारत में डेमोक्रेसी के लिए राहुल गांधी के खिलाफ खड़ा है। नेहा बोरा के शब्द राहुल गांधी के विचार को स्पष्ट करते हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो विद इन 1 आवर, अगर राहुल गांधी जो हर 1 घंटे में ट्वीट करते हैं, जो रील मेकिंग एक्सपर्ट बन चुके हैं, जो रील मेकिंग के कंपटीशन कर रहे हैं, अगर उनकी मानसिकता अराजक नहीं है तो मैं कहता हूं 1 घंटे के अंदर नेहा बोरा के खिलाफ स्टेटमेंट देकर दिखाई, क्योंकि वो और आप एक ही हैं। तो आखिरी में मेरे 3 पॉइंटेड सवाल है। पॉइंटेड सवाल नंबर 1 कि भारत के अंदर बांग्लादेश जैसा आंदोलन करने का प्रयास क्या स्पष्ट नहीं करता है कि राहुल गांधी की अराजकता का प्रूफ आ चुका है? सवाल नंबर 2, राहुल गांधी और नेहा बोरा में कोई डिफरेंस नहीं है, क्या इससे स्पष्ट नहीं होता है कि राहुल गांधी का ऑपोजिशन पॉलिटिकल रेजिस्टेंस नहीं बल्कि इस देश के डेमोक्रेसी को खत्म करने की साजिश है? पॉइंट नंबर 3, क्या इससे ये प्रूफ नहीं होता है कि राहुल गांधी रेजिस्टेंस के बहाने अराजकता फैला रहे हैं? पॉइंट नंबर 4, कि एक आइसोलेटेड इंसिडेंट या आइसोलेटेड बयान नहीं है, शी इज द पोस्टर गर्ल ऑफ द कांग्रेस पार्टी इकोसिस्टम। और उसके जस्ट पहले प्रशांत भूषण ने भी स्ट्रीट रेवोल्यूशन और खून खराबे की बात करी थी। तो क्या ये सीरीज ऑफ पैटर्न ये पॉइंट नहीं करते कि इनका मकसद इस देश के लोकतंत्र इंडियन स्टेट के खिलाफ एक रिवोल्ट लाने का है? इन सब पे एक ही प्रूफ है दैट टुडे इट इज प्रूवन दैट राहुल इज एन एनार्किस्ट। राहुल गांधी आत्मचिंतन करने के बजाय अपने पूरे इकोसिस्टम से अराजकता को बढ़ावा, अराजकता का समर्थन और अराजकता को अपना रहे हैं। और इसीलिए इस देश की जनता जब ये अराजकता को अपना रहे हैं, बार बार बैलेट के जरिए इनको बता रही है नो टू एनआरकी। तो आज का हमारा मकसद है नो टू एनआरकी, यस टू डेमोक्रेसी। नो टू राहुल गांधी, यस टू डेमोक्रेसी। नो टू परिवारवाद, यस टू डेमोक्रेसी। और यही दो विचारों की बात आज देश के अंदर हो रही है। ये लड़ाई राहुल गांधी और उनका इकोसिस्टम जो बांग्लादेश जैसी स्थिति भारत के अंदर चाहता है, जो भारत की डेमोक्रेसी के ऊपर सवाल उठाना चाहता है, बनाम वी द पीपल ऑफ इंडिया है। तो आज ये स्पष्ट हो जाए, जो जो राहुल गांधी का समर्थन करने का प्रयास कर रहा है वो एनआरकी और अराजकता का समर्थन करने का प्रयास कर रहा है। जो राहुल गांधी की पोस्टर गर्ल नेहा बोरा का समर्थन कर रहा है वो इस्लामिस्ट अनडेमोक्रेटिक एनआरकिक रिवोल्ट भारत के अंदर उसका समर्थन कर रहा है। और जो जो राहुल गांधी का समर्थन कर रहा है वो इंडियन स्टेट के खिलाफ एनआरकी को लेजिटिमाइज कर रहा है। इसीलिए आज राहुल के खिलाफ वी द पीपल ऑफ इंडिया, द इंडियन डेमोक्रेसी इज स्टैंडिंग रॉक सॉलिड अगेंस्ट राहुल गांधी। और वो कहते हैं रिक्लेमिंग द डेमोक्रेसी, वो कोई रिक्लेम डेमोक्रेसी की बात नहीं कर रहे, वो रिक्लेम परिवारवाद को कर रहे हैं, वो लेजिटिमाइजेशन ऑफ एनआरकी की बात कर रहे हैं। सो द रियल फाइट विच यू आर सीइंग इन द कंट्री टुडे इज बिटवीन डेमोक्रेसी एंड राहुल गांधी, बिटवीन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस एंड राहुल्स एनआरकी, बिटवीन डेमोक्रेटिक ओपिनियन एंड डेमोक्रेटिक रेजिस्टेंस वर्सेस बांग्लादेश टाइप एनआरकी विच राहुल गांधी, हर पोस्टर गर्ल नेहा बोरा एंड हिज आइडियोलॉग प्रशांत भूषण वॉन्ट्स टू गेट। तो मैं आपके जरिए देश की जनता को कहना चाहता हूं, राहुल को कुछ सद्बुद्धि दीजिए जिससे वो अराजकता को त्यागे, देश से माफी मांगे और स्वीकारें कि अगर इतनी मेहनत हो जनता की सेवा करने में लगाए होते तो क्या पता कांग्रेस का वोट शेयर बन जाता। बहुत बहुत धन्यवाद, कोई सवाल हो तुम ले सकते, शुक्रिया।
1: This is the briefing by the BJP, very pointed attack by the Saffron party saying that the fight is between democracy and Rahul Gandhi, attacking Neha Bora over the comments that she had recently made. The BJP says that Neha Bora's movement is inspired by Bangladesh Gen Z movement and that Rahul Gandhi, Neha Bora are alike, they are both against the constitution. Now this is with regard to the statement that was made by the All India Students Association President Neha Bora earlier, who was heard praising Bangladesh Gen Z movement for inspiring young people in India to fight for democracy and voting rights. BJP says that the goalpost is not the removal of the CEC president per CEC per se, but the goal, a larger goal, is anarchy, and that is what the BJP claimed in its presser, saying that Neha Bora, Rahul Gandhi are both fighting against the constitution. All right, we will just go across to Ishwara as well to get us some more details. But once again, the big takeaways from the briefing by the BJP saying Bora is against the constitution. This is after the remarks by the AISA president that created Rao. This is the remark where she said that the movement is inspired by Bangladesh. BJP going all guns blazing, saying that the movement of the Congress, the movement of Neha Bora is one that is inspired by Bangladesh Gen Z movement. Let's quickly go across to Ishwara. Ishwara, could you please take us once again through the big takeaways of the briefing by the BJP?
6: Well, that's right. The Bharatiya Janata Party clearly stating at this moment that it is an ideology of the Congress Party that clearly defines what Neha Bora had stated as far as, taking the entire, motivation from Bangladesh, where there was a regime change and how the students had fought for voter rights and their democracy. Perhaps Sheikh Hasina's government was something that was thrown away, and there was a regime change, and that's what they wanted to do. This is something that Rahul Gandhi's mindset clearly also reveals. Remember, it was just a few days back, Rahul Gandhi posted a video on his social media account stating that the process has begun. Of course, they will topple the government. Later, there will be identification of those who had committed vote fraud, and later they will be punished. And post that, there will be democracy that will be fixed. And that's what the Congress Party and the student unions, who have the leaning towards the left wing, clearly proposes. They wanted to topple the government, is the claim. And this is an open admission by Neha Bora that clearly is something that is dangerous for India's democracy.
1: Aishwarya, stay with us. Any statement that we've heard from Neha Bora so far on those remarks that she had made earlier that have become big and become the biggest flashpoint as far as that briefing is concerned of the BJP?
6: Well, Neha Bora was speaking at via video conferencing and was addressing to the students front in the in Bangladesh, and post those comments that she made, there is no such reaction that have come in, and the justification as to what she has stated. Perhaps they clearly believe that if the student fronts and student unions and such people who clearly want voter rights to be saved in this country, they all come together, then there could be massive changes that can happen in the country as well, and there could be this regime that can be changed. Perhaps the Bharatiya Janata Party on their side has lashed out at such a comment and stated that this is harmful, dangerous for India's democratic system. Perhaps these people should be alerted from these kind of organizations and fronts which have such an ideology and such a leaning.
1: Yes, stay with us, Aishwarya, for the viewers also tuning in. We just heard that briefing by the BJP saying that the real intent of the Congress Party or the AISA president is not what they are fighting for, what they call as a change, as the suspension of CEC, but the real intent is regime change. In fact, the BJP has gone ahead and labelled them as both Neha Bora and Rahul Gandhi as anarchists. Aishwarya continues to be with us. Aishwarya, once again, for our viewers tuning in, take us through the broader points being mentioned by the BJP in its briefing. That specific mention of that remark by Neha Bora, where she apparently likened her movement to that of the Gen Z movement in Bangladesh, which led to the regime change altogether.
6: Well, it is the Bharatiya Janata Party national spokesperson Pradeep Bhandari who had dashed out at Neha Bora and stated that this is not political resistance. It is an anarchic march and had an anarchy, that's the Congress Party also wanted in this country. They have such a mindset of anarchists to be prevailed. It is Bharatiya Janata Party who went on to say that Indian democracy does not allow anarchy to be supported or endorsed. This is not an isolated incident. In the past as well, we have heard in a joint press conference with Rahul Gandhi where Prashant Bhushan stated that he wanted a revolution and spoke about bloodshed. And exactly 24 hours later, Rahul Gandhi held joint press conference with the same Prashant Bhushan who had spoken such a words. And there is a pattern that Bharatiya Janata Party thinks that indicates that Rahul Gandhi's objective is not democratic resistance, but the appropriation and legitimization of anarchy. These are huge counter claims that have been made by Bharatiya Janata Party in regards to what Neha Bora stated as far as the students' front is concerned, where she went on to say that what has happened as far as the open regime change in Bangladesh, they have taken inspiration from them, and that is something that they are fighting back in India with Gen Z's and student fronts involving into it. Bharatiya Janata Party is stating that this is not democratic resistance. It is a fight against Indian state and Indian democracy.
1: Thank you for getting us all those details. So BJP has shared a video of AISA President Neha Bora where she is talking about Bangladesh protest. Now, in this video that has now gone viral, Neha Bora has praised Gen Z movement of Bangladesh and has said that these protests inspired her and showed her a way. She has also expressed solidarity with Bangladesh Gen Z movement The BJP alleges that the message signals outright support for regime change in the country. BJP also alleged that Neha Bora and Rahul Gandhi are leading protests against CEC Gyanesh Kumar in order to disrupt democracy in India and for a regime change altogether.
7: We present you our red salute, and we know that the Gen Z movement that we are seeing everywhere in this country first started in Bangladesh. And congratulations to you for showing us the way, for showing us and extending solidarity to the young people of this country. We know that the movement that began in Bangladesh was for democratic and voter rights. Today, the movement that the young people are participating in and leading is also a movement for democratic and voting rights. We know that the fight that you fight against religious fundamentalism in your country is also a fight that the Gen Z and the young people of this country fight today.
8: Neha Bora has perilously stated that she was inspired by the regime change in Bangladesh, insinuating a desire to replicate the same in India. Earlier we had seen Prashant Bhushan saying there was no other option but bloodshed. Rahul Gandhi and his cohorts, their anarchic agenda seems to be to subvert our constitution, destroy democracy and somehow grab power by hook or crook.
9: देखिए बीजेपी उसी डेमोक्रेसी की दुहाई दे रही है जिस डेमोक्रेसी को बचाने के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं, पूरा देश लड़ाई लड़ रहा है। ज्ञानेश कुमार जी का इस्तीफा क्यों मांगा जा रहा है? इसीलिए मांगा जा रहा है कि उन्होंने भारत के लोकतंत्र का कत्ल किया है। और जहां तक सवाल नौजवानों का है, दुनिया में जितने इनकलाब आए हैं वो हमेशा नौजवान लेकर आए हैं। नौजवानों की इस आवाज को, हमारी इस आवाज को भारतीय जनता पार्टी डेमोक्रेसी की दुहाई देके दबा नहीं सकती है। हम देश के लोकतंत्र को, देश के संविधान को, पार्लियामेंट की गरिमा को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं।
10: आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस बांग्लादेश रिलेटेड कॉन्ट्रोवर्सियल स्टेटमेंट। वी फाइट फॉर द रिमूवल ऑफ मिस्टर ज्ञानेश कुमार। We fight for this country. And for us, the source of inspiration is India's freedom movement. Our forefathers fought against Britishers, and for all Indians, freedom movement, movement for India's independence is the greatest source of inspiration. No need of getting, you know, inspiration from any other sources. So our own people have their own, you know, style of fight. Their own, you know, way to counter all odd situations. So I do believe in that no need of copying any revolution or any upsurge in other countries. We would like to watch all this development, but for us, our own way of functioning is there.
1: And in the latest in Congress MP Akoyjim's sexual harassment case, a letter has now been submitted to Lok Sabha Speaker Om Birla by women BJP MPs, and this is against the Congress MP, seeking the matter be referred to the ethics panel. Let's listen in to the briefing being done by the BJP at this point.
11: There was a committee that was constituted, an internal committee that was constituted by the Vice Chancellor of the university, and the internal committee in its report had very clearly specified that Vimala Koyjam was guilty of molesting the 11 girl students who have actually raised the complaint. Unfortunately, the other day I was actually watching an interview that was given by him, wherein he very proudly says that it is not 11 complaints, but it is 15 complaints that was raised against him. I mean, I just wonder, it's just beyond my imagination ki somebody would say very proudly that there were 15 complaints raised against him, out of which 3 were boys. These were words that had come right out of the mouth of Vimala Koyjam. So he himself in one way has said very categorically that he did actually molest the girl students who have actually raised their voices. And we totally admire the bravery and courage with which these girls have come forward, because as they are students in the university, really takes a lot of courage to come out and speak against somebody who is at a level of a professor, because they know that they could be subjected to some any kind of discrimination against them. So we really truly appreciate the courage.

0: security.
1: In other news then, a war of words has erupted between US singer Mary Melvin and Cockroach Janata Party founder Abhijeet Dibke, and this is over allegations of foreign funding linked to the CJP. Melvin, the singer, has alleged that CJP donors based in the US are opposed to the Prime Minister Modi government while urging young patriots to peacefully protest organizations' disruptive activities. Dibke has hit back to this remark, questioning as to why foreign nationals should even interfere in India's internal matters. He has asked why Prime Minister Narendra Modi seeks US support while asserting that India can handle its own issues without outsiders. This row has also drawn a sharp reaction from the BJP, with the latter having alleged that foreign funds are being used to destabilize the country and claimed that the CJP is a front organization of the Aam Aadmi Party.
2: मेरी मेलबर्न जो कह रही है कि सीजीपी के दाता, धन के दाता अमेरिका में कई सारे लोग हैं, कौन कह रहा है ये? अमेरिका में एक प्रतिष्ठित जिनका नाम है वे स्वयं कह रही है। और अब टाइमिंग देखे, यही कॉकरोच पार्टी का नेता दिपके अमेरिका से लौटता है भारत, और भारत लौटने के बाद यहां पर पूरी तरह से झूठा भ्रम फैलाते हुए, जैसे श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, इसमें अराजकता फैलाने का प्रयास हुआ, वह दुस्साहस भारत के भूमि पर करता है। कौन है फॉरेन फंडिंग, क्यों कर रहे ये?
3: मेरी मेलबर्न डिस्क्लोज्ड दैट the Cockroach Janata Party is getting funds from America, and foreign fund is being pumped into India to destabilize the country and to have activities against Modi. This we have seen earlier also, the Shaheen Bagh case also, the same similar situation while the CAA agitation was going on, and how they created communal clashes. And this time also the CJP is being used, which is a frontal organization of the Aam Aadmi Party. How they are getting funds from foreign agencies, including that of George Soros.
4: ये बड़ी पुरानी ट्रिक है नरेंद्र मोदी जी की और भारतीय जनता पार्टी की। कोई आंदोलन हो, किसी से बयान दिला दो, कोई पहली बार दिला रहे हैं तमाम लोगों से, जब तक वो ऑथेंटिकेट ना हो जाए, पूरी तरह साफ ना हो जाए। अब एक दो आदमी भेज दो एयरपोर्ट पे, नारे लगा दें, इससे नहीं रुकने वाला आंदोलन। अब आंदोलन संविधान बचाने का है, ये आंदोलन लोकतंत्र बचाने का है, ये लोकतंत्र वोटिंग राइट लोकतंत्र का जो है उसे बचाने का है। अब भारतीय जनता पार्टी चाहे जितना फ्रॉड करे पॉलिटिकल, चाहे जितना पॉलिटिकल अपना चेहरा छिपाए, अब छिपने वाला नहीं, दबने वाला।
5: आज जिस प्रकार से भारत में लोकतंत्र को कुचला जा रहा है, संविधान को कुचला जा रहा है, आज लोग बहुत सारे मुद्दा को लेकर के रोड पे हैं, नौजवान रोड पे हैं, किसान रोड पे हैं, महिलाएं रोड पे हैं, पूरा विपक्ष रोड पे है, और सरकार एक नहीं सुन रही है, सरकार बात करने के लिए नहीं तैयार है। तो देखिए, मैं एक चीज जरूर कहूंगा, ये जो मामला है, इससे लग रहा है, आपने देखा दिल्ली में किस प्रकार से छावनी बना दिया गया, दिल्ली को किला बना दिया गया, निर्दोष लोगों को उठा उठा करके डिटेन किया गया, जेल में डाला गया। तो आप बताइए, देखिए मैं किसी देश के बारे में नहीं जानता हूं, लेकिन लोकतंत्र की जननी रही है भारत देश, और यहां के लोगों के साथ में इस प्रकार का बर्ताव होना एक बहुत बहुत चिंतनीय विषय है।
1: And on to breaking inputs that are coming in from down south. This is a TVK that has joined the opposition block stir in Chennai. Opposition block stir against CEC Gyanesh Kumar. BJP has hit out at TVK India block stir. BJP claims that TVK Congress protest is nothing but a disastrous self-goal. And they've also gone on to say that they rank hypocrisy exposed before Tamil people, and that SIR protest is illogical and irrational. So that's the statement also that's coming in from the BJP over TVK's protest march. The TVK having joined the opposition stir in Chennai, drawing a backlash from the Saffron Party. In fact, we have a ground report.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: मीठा या नमकीन चाहे जैसे खाओ 100% सूजी से बनी आर प्योर व मिसली स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज। द शार्पेस्ट ग्लोबल वॉइसेस डिकोड अ वर्ल्ड बिटवीन ऑर्डर्स। डॉक्टर स्वर्णिम वागले, जनरल डेविड पेट्रियस, स्वामी सर्वप्रियानंदा, माइक वॉल्श, निकोलस बक्स at the NDTV World Summit, A World Between Orders, 22nd and 23rd October, New Delhi.
2: A verdict can change a business. A law can reshape an industry. A regulation

0: this is where the story gets really interesting. Because our challenge sirf information ki kami nahi hai. The bigger challenge is the behavior gap. Most of us know ki hame haath dhone chahiye. Children also know it. To shayad sawal sirf ye nahi hona chahiye ki how do we teach children hand washing? Bada sawal ye hai. How do we design their everyday environment so that washing hands becomes almost instinctive? Ek habit ban jaye. ताकि बच्चों को बार बार याद दिलाना ना पड़े और हैंड वॉशिंग उनकी डेली रूटीन का नेचुरल हिस्सा बन जाए. एंड समटाइम्स दैट जर्नी स्टार्ट्स विद समथिंग सरप्राइजिंगली सिंपल, एक बिल्डिंग ब्लॉक. एंड फ्रॉम द बिल्डिंग ब्लॉक वी मूव टू द बिल्डिंग इटसेल्फ. अ सिंक इजंट सिंपली इंफ्रास्ट्रक्चर व्हेन इट बिकम्स पार्ट ऑफ हाउ अ चाइल्ड लर्न्स एंड प्रैक्टिसेस हाइजीन. ईच इंटरैक्शन प्रोवाइड्स अनदर अपॉर्चुनिटी टू रीइंफोर्स द बिहेवियर.
1: तो नॉर्मली बच्चे तीन तरीके से सीख सकते हैं.

0: या तो देख के, सुन के या कुछ हाथों से करके। पूरे कैंपेन में हमारे पास बहुत सारी एक्टिविटीज़ है, हमारे पास वर्कशीट्स है, ऑडियो वीडियो है, बट एक टैक्टाइल एलिमेंट मिसिंग था जो हम ब्रिक्स एंड ब्लॉक्स के थ्रू उसको कंप्लीट कर रहे हैं। और जितनी चीज़ें हम हाथों से करेंगे उतनी चीज़ें हम ज़्यादा टाइम तक रिकॉर्ड कर पाएंगे और उसको हम ज़्यादा टाइम तक याद रख पाएंगे। तो एक टैक्टाइल एलिमेंट मिसिंग था जिसको हमने यहाँ पूरा किया है और जिससे जो लर्निंग है या जो सीख रहे हैं वो ज़्यादा टाइम रह पाएगा। सो दैट वॉज द होल आइडिया ऑफ मेकिंग इट अ टैक्टाइल एक्सपीरियंस। सो वॉट यू एक्चुअली सी हियर इज दैट वीव प्रीटी मच मेड द होल हैंड वॉशिंग एक्सपीरियंस, जिसे हम कहते हैं हाइजीन, पर्सनल हाइजीन, वो सारी चीज़ों को हमने एकदम टैक्टाइल बना दिया है। आप अगर देखोगे को बच्चों ने ये डेटॉल के सोप्स बनाए हैं एंड इज एक्चुअली मेकिंग वन। यही है कि ये हम सीखते हैं कि हैंड वॉश करना है, सोप है, बट क्या हम इसको खुद बनाएं? हमारा जो सोप जिसे हम यूज़ करते हैं क्या हम उसे बनाएं? तो ये एक आइडिया था कि हम डेटॉल के सोप बनाएं विथ ब्रिक्स एंड ब्लॉक्स।
1: नाउ थिंक अबाउट इट, जब आप 5, 6 या 7 साल के होते हैं तो आपको क्या ज्यादा याद रहता है? किसी ने आपको एक डेफिनेशन समझाई या फिर समथिंग यू बिल्ड, या आपने किसी चीज को छुआ था, गाने गाए थे, यू प्लेड और प्रैक्टिस योरसेल्फ। ऑफ कोर्स व्हेन चिल्ड्रन एक्सपीरियंस समथिंग देमसेल्व्स इट ऑफन स्टेज विद देम लॉन्गर एंड दैट ब्रिंग्स अस टू अनदर पावरफुल वे ऑफ टीचिंग चिल्ड्रन, वो है स्टोरी टेलिंग। Hygiene education doesn't always need a blackboard. Sometimes it can have music, sometimes puppets, sometimes a story. Dettol Banega Swasth India is using folk music and puppetry to communicate messages around hand washing, school hygiene, home hygiene and neighborhood cleanliness. The medium changes, the health message remains. Because when children enjoy what they are learning, education stops feeling like instruction and becomes an experience. And that's what takes us from lecture pedagogy to practice pedagogy. But behind all the innovation is a serious public health purpose.
2: The DBSI, or the Dettol Banega Swasth India program, is now into 13 years. And the reason why it has got such a long run is possibly because some of its out-of-box innovative ideas. For example, they constantly interact with children, making new methods, new like in hygiene accelerators and other issues. That's a very innovative thing because it fills the gap of hygiene where health is concerned. And I think making children aware of hygiene, linking hygiene to health, that hygiene will improve their health, improve their studies, improve their school attendance, improve their nutritional status, is something which is very important to inculcate to the children's mind at this age, because this is going to stay with them for their entire lifetime.
1: So how do we turn a health message into an everyday habit? Sometimes by changing the way we teach it, from learning through play to turning the school itself into a learning tool. Hygiene education is getting increasingly innovative. What if the walls, floors and corridors of a school could teach children about health? That is H. Bala. Hygiene building as learning aid. It transforms everyday school spaces into interactive learning tools using games, puppetry and hands-on activities to teach 5 areas of hygiene, from personal and home hygiene to school illness and neighborhood hygiene. Built around the 6 C's of curriculum, communities, collaboration, campus, connect and children, the idea is to move hygiene education beyond lectures. Because children don't just learn by listening, they learn by seeing, playing, practicing and repeating. And that's how a lesson begins to become a habit. And over time, these small actions build one child, one classroom, one school, one family. Because har innovation, हर लेसन और हर हैबिट का अल्टीमेट गोल सिर्फ एक ही है, सो दैट वी कैन गिव बेटर हेल्थ इन मोर हैंड्स एवरी डे. सो इस ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे, लेट्स गो बियॉन्ड सिंपली टेलिंग पीपल कि वॉश योर हैंड्स. लेट्स आस्क द रियल क्वेश्चन, क्या हम सही तरीके से अपने हाथ धो रहे हैं, राइट मोमेंट्स पर धो रहे हैं, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, क्या हम हैंड वॉशिंग को अपनी एवरीडे लाइफ का इतना नेचुरल पार्ट बना रहे हैं कि किसी को हमें रिमाइंड ही ना करना पड़े कि हमें हाथ धोने हैं. क्योंकि पब्लिक हेल्थ सिर्फ हॉस्पिटल्स में नहीं बनती, इट कैन बिगिन एट अ स्कूल से, एक क्लासरूम में शुरू हो सकती है, एक गेम के जरिए हम सीख सकते हैं और एक स्टोरी से भी. समटाइम्स इट बिगिंस विद समथिंग एज सिंपल एज अ चाइल्ड लर्निंग टू वॉश द हैंड. Because healthier habits today can build a healthier tomorrow. The solution sounds incredibly simple. Two hands, soap and water. A few moments, but the bigger story isn't merely the act of washing hands. It is the making of a habit. It is so that we can give better health in more hands every day.

0: of the electoral rolls. Smriti Irani posts Big B AI video to counter Rahul Gandhi, in which Amitabh Bachchan can be seen explaining the entire process, the SIR name removal to Rahul Gandhi. So explaining why certain names have been removed. Smriti Irani says, can't wake those who are blind or don't take note of the facts. Can't wake those blindly misleading others. So Smriti Irani taking on Rahul Gandhi over his allegations against the Chief Election Commissioner and his allegations that people are deliberately being deleted from the electoral rolls with this AI video which features Amitabh Bachchan, who is explaining it to Rahul Gandhi. Well, let's take a look.
1: Sabko pata hai ki ye mara hua hai aur vote nahi kar sakta. बस रूल्स का गलत इस्तेमाल करके इस बात को साबित नहीं होने दे रहा है।
2: किसी भ्रष्ट अफसर ने टेबल के ऊपर से मेरा डेथ सर्टिफिकेट इशू नहीं किया। डेथ सर्टिफिकेट इशू नहीं किया तो वोटिंग लिस्ट से मेरा नाम भी नहीं कटा। नाम नहीं कटा तो आपको सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा कि पिछले चुनाव में किसी नेता ने मेरे नाम से वोट डलवा दिया। तो बताइए, ये इलेक्शन ऑफिस के पेपर्स हैं, इसमें जो वोटिंग लिस्ट है उसमें मेरा नाम है और रिकॉर्ड्स के मुताबिक पिछले इलेक्शंस में मैंने वोट डाला हुआ है मड़गांव से।
1: सबको पता है कि ये मरा हुआ है और वोट नहीं कर सकता। बस रूल्स का गलत इस्तेमाल करके इस बात को साबित नहीं होने दे रहा है।
2: किसी भ्रष्ट अफसर ने टेबल के ऊपर से मेरा डेथ सर्टिफिकेट इशू नहीं किया। डेथ सर्टिफिकेट इशू नहीं किया तो वोटिंग लिस्ट से मेरा नाम भी नहीं कटा। नाम नहीं कटा तो आपको सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा कि पिछले चुनाव में किसी नेता ने मेरे नाम से वोट डलवा दिया। तो बताइए, ये इलेक्शन ऑफिस के पेपर्स हैं, इसमें जो वोटिंग लिस्ट है उसमें मेरा नाम है और रिकॉर्ड्स के मुताबिक पिछले इलेक्शंस में मैंने वोट डाला हुआ है मड़गांव से।
0: All right, so Smriti Irani posting that AI video featuring Amitabh Bachchan and who's explaining to Rahul Gandhi about the SIR process. Well, moving on to other breaking news now coming in, and actor Imran Khan, Aamir Khan's nephew, is likely to move the court against the Mumbai police order. Remember, Imran Khan, who has been asked to leave India by the 28th of October following his participation in a protest on October 10. This protest called by the Cockroach Janata Party against Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar. Now, action has been taken against him by the Mumbai police because he took part in the march, in the protest, despite not being an Indian citizen. He's reportedly a US citizen. He is an OCI card holder. That actor was among those who gathered at Mumbai's August Kranti Maidan to demand the Chief Election Commissioner's resignation, and he was there along with his partner and his cousin. Mumbai police detained the three during the demonstration, and that those visuals there on your screen. The actor has now been asked to leave the country by the 28th, but he's likely to challenge this in court. Let's go across to Sujata now for more on all these developments. And Sujata, take us through, you know, what you're hearing now. Sources saying Imran Khan likely to approach the courts.
3: Well, yes, Imran Khan is likely to move to the court, and the matter is likely to come up for an urgent hearing before a bench of justices. But before that, the notice which has been issued by the FRRO to Imran Khan, it states that though he holds an OCI card, which means an overseas citizen of India card, yet he is not allowed to participate into the internal political interest and protest of the country, and which we could see that Imran Khan had been protesting and also participating in these demonstrations that were held in Mumbai. And on 10th of October, he participated in one of these protests at the August Kranti Maidan, leading to his detention. And thereafter, an FIR for his file was filed against him. And now, after which we know that BJP leader Kirit Somaiya too took this matter up at Gamdevi police station. But for now, as per the FIRRO, they have stated that he needs to deport from India by the 28th of this month. And if not done so, then action will be initiated accordingly. As per our police sources, what we have known is that the notice that had been given by the FIRRO has been accepted at his residence. Though Imran Khan was present or not is not yet confirmed, but yes, after the notice was received is when Imran Khan is likely to move to the court challenging this directive which has been issued to him. And once the hearing is completed, it will be clear whether Imran Khan will stay back or will he have to leave India following the Bombay High Court's order. And also that Imran Khan is because of the same reason of his demonstrations, he has been asked to leave the country. Over to you.
0: All right, thanks so much, Sujata. And do stay on, more breaking news. And obviously, as expected, politics has also broken out over this move by the Mumbai police of asking the actor to leave the country over the fact that he was present there during the protest against the chief election commissioner, and politics over this exit notice, with the NCP SP saying that it is wrong to expel Imran Khan just for being there for the protest. Supriya Sule has taken this on, and she says, she points out that there are serious charges against the chief minister as well. The chief minister remains in the post despite these charges, questioning this action by the Mumbai police of asking actor Imran Khan to leave the country by the 20th of October just for participating in the protest. Though, remember, he's not an Indian citizen. He's reportedly an American citizen, and that's why the police have asked him to leave. Let's listen into what Supriya Sule said.
4: आंदोलन करायचा अधिकार प्रत्येकाला आहे. आता म्हणे त्याला त्याचा फॉरेन पासपोर्ट आहे का काय. आता आमचे पण किती फ्रेंड्स परदेशात राहतात, तेही आंदोलन करतात तिथे. म्हणून त्या लगेच हद्दपार कोणी करत नाही. दुर्दैव आहे, एखाद्याला तुम्ही समाज प्रेमाने देऊ शकता. लोकशाही पद्धतीने प्रत्येकाचे काय अधिकार आहेत नाही आहेत याच्यावर चर्चा होऊ शकते. पण म्हणून एखाद्याला डायरेक्टली हद्दपार करणं का, तर त्यांनी आणि असा काय गुन्हा केलाय. अहो, या देशामध्ये ज्यांनी हत्या केल्यात, बलात्कार केलेत, या अनेक राज्यांचे मुख्यमंत्री आहेत. आता कशाला मला बोलायला लावताय. एक मोठं राज्य आहे देशातलं, ज्याच्यामधल्या मुख्यमंत्र्यावर खुनाचे आरोप आहेत. मुख्यमंत्री ठेवलाय ना, यांनी तर बिचाऱ्यांनी आंदोलनच केलंय.
0: All right, we're joined on the phone line now by Shaina NC, Shiv Sena spokesperson. Your response, ma'am, to what Supriya Sule said regarding how it is unfair to give Imran Khan such a notice to leave the country. She also questioned that the chief minister, who has allegations against him, yet he remains in position.
5: Look, it's not for me or our party to comment on Imran Khan, but do understand that if there is somebody who is of foreign origin or a foreign citizen who chooses to be a part of a political protest, and if the papers are not in sync, then I think it's for law to take its course. It's not for us to comment on this. Let the Ministry of Home Affairs look at all the various avenues and then come up with what the official statement is. He's gone to court, and let the courts decide. But having said that, please understand that this so-called andolan was for what? For a constitutional right, which is to ensure that the SIR is a clean-up process to strengthen a democracy. And you have chosen to be a part of the foreign agenda, which is to destabilize India. So I think a little bit of soul-searching and introspection is also required.
0: All right. Thanks so much for joining us. So Shaina NC, they're reacting to these developments and to Supriya Sule saying it is wrong for to ask Imran Khan to leave the country, and this exit India order that he's been given. Let's go across to Sujata for more on this. And Sujata, so, understandably, politics also breaking out with Supriya Sule questioning this move by the Delhi police, saying that, you know, just because he was there at the march, how can you ask him to exit the country? Also, you know, raising these points about how the BJP has certain cases against him, but he remains in his position.
3: Well, that's right. Politics has begun to surround here in Imran Khan's case of deportation, which he has been asked to leave the country by 28th of this month. Supriya Sule, an MP from Baramati, has now commented stating that there could have been the privacy as well as the right to protest could have been respected in this case. And also she has stated that this matter could have been handled more amicably. In that case, Supriya Sule did not just stop there. She also went on to comment and talk about the accountability, stating that people who are accused of murder and rape today have gone on to become chief ministers. And for that reason, we know that Supriya Sule as well as the opposition together have been supporting these protests that have been held lately here in the city as well as the state. And here this time, Supriya Sule, on the action which has been taken against Imran Khan, she's now told that this matter could have been dealt with more amicability, and also that Imran Khan being asked to leave the country is not how a celebrity or any person who is in the public eye should have been dealt with. Over to you.
0: All right, Sujata, thanks so much for joining us with those details. So Imran Khan, asked to leave the country after participating in the October 10th march or in October 10th protest that was called by the Cockroach Janata Party against the Chief Election Commissioner. And now Supriya Sule and politics also taking place. Supriya Sule questioning this move. All right, moving on to other news now, and the BJP has shared a video of ISA President Neha Bora where she's talking about the Bangladesh protest. Remember the students' protest in Bangladesh. Now, in this video, she's praised Gen Z movement of Bangladesh and said that those protests inspired her and showed her a way. She also expressed solidarity with Bangladesh's Gen Z movement. The BJP alleges the message signals support for regime change in India. The BJP alleged that Neha Bora and Rahul Gandhi are leading protests against Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar to disrupt democracy in India and for a regime change. Our Congress leaders have backed Neha over the issue and said the BJP invoking the democracy that we are fighting to save, whereas the CPI has said that we don't take inspiration from Bangladesh stir, but from our own freedom movement. Meanwhile, outrage grows over YouTuber Dhruv Rathi's remarks saying that the cops and army should also raise their voice together, hinting at an armed resistance.
6: We present you our red salute, and we know that the Gen Z movement that we are seeing everywhere in this country first started in Bangladesh. And congratulations to you for showing us the way, for showing us and extending solidarity to the young people of this country. We know that the movement that began in Bangladesh was for democratic and voter rights. Today, the movement that the young people are participating in and leading is also a movement for democratic and voting rights. We know that the fight that you fight against religious fundamentalism in your country is also a fight that the Gen Z and the young people of this country fight today.
7: Jo Rahul Gandhi ka vichar hai, wohi Neha Bora ka vichar hai. और ये नेहा बोरा ने कल एक इंटरव्यू में कहा, जो आपके सामने मैं इस वक्त रख रहा हूं, कि ये इंस्पायर्ड है बांग्लादेश के आंदोलन से, और जैसा बांग्लादेश के अंदर हुआ ठीक वैसा ही ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर हो। ध्यान से देखिए, ये नेहा बोरा के शब्द हैं, परंतु विचार राहुल गांधी के हैं, क्योंकि एक तरफ अगर आप ध्यान से देखेंगे, नेहा बोरा को अप्रोप्रिएट राहुल गांधी कर रहे हैं, और दूसरी तरफ वही नेहा बोरा कह रही है कि भारत के अंदर बांग्लादेश जैसा अराजक जेंजी आंदोलन वो चाहते हैं, बांग्लादेश जैसा अराजक जेंजी आंदोलन वो चाहते हैं। मतलब साफ है कि बांग्लादेश में हुआ क्या था, एक ग्रुप ऑफ इस्लामिस्ट ने भीड़ के सहारे, अराजकता के सहारे पूरे के पूरी व्यवस्था को तहस नहस करने का प्रयास किया। उनका मकसद रेजिम चेंज था। मतलब आज ये साबित हो चुका है कि राहुल गांधी जब लोकतांत्रिक रूप से अपने परिवार को सत्ता में नहीं ला पा रहे हैं, तो अब ये स्पष्ट हो रहा है कि राहुल गांधी और उनका पूरा इकोसिस्टम भारत में लोकतंत्र को तहस नहस करने की एक साजिश रच रहे हैं। ये पॉलिटिकल रेजिस्टेंस नहीं है, ये एक एनार्किक मार्च है और एक एनार्किक रिवोल्ट है।
8: Neha Bora has perilously stated that she was inspired by the regime change in Bangladesh, insinuating a desire to replicate the same in India. Earlier we had seen Prashant Bhushan saying there was no other option but bloodshed. Rahul Gandhi and his cohorts, their anarchic agenda seems to be to subvert our constitution, destroy democracy and somehow grab power by hook or crook.
9: भारत लोकतांत्रिक तरीके से ही आज एक है और भविष्य में विकास के ओर अखंडता और एकता के साथ बढ़ता रहेगा। इस तरह के मतलब बचकाने बयान देकर देश में एक अराजकता फैलाने की और ये तो एक विचारधारा की ही बात है, मैं उसके बारे में क्या कहूँ। अब युवक हैं, शायद देश को पूरी तरह समझे नहीं है, अनजान है, और ऐसे तो खैर ठीक है, कई आते हैं बोलते हैं, मगर आज भी पूरे 145 करोड़ देशवासियों को अपने वोट का अधिकार हमारे संविधान के आधार पर मालूम है और उसका ठीक उपयोग करके ही इस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाए रखते हैं।
10: बीजेपी हैज अ स्क्रिप्ट राइटर्स एंड नैरेटिव सेटर्स व्हिच दे जस्ट डू बिकॉज दे डू नॉट हैव आंसर्स टू ऑल दोज रेलेवेंट क्वेश्चंस, ऑल दोज रेलेवेंट इश्यूज व्हिच द स्टूडेंट।
0: All right, let's go cross now to where BJP leader Gaurav Bhatia is addressing a press conference. Let's listen in.
11: दोहरे मापदंड कांग्रेस पार्टी के, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की अराजकता और संविधान को तार तार करना। जहां नवरात्रों की हमने बात करी, देवी स्वरूप को पूजा जाता है, वहां महिलाओं की अस्मिता की जब बात आती है तो महिलाओं की अस्मिता के साथ खिलवाड़, वर्दी पहने हमारी बहनों को गलत तरीके से छूना, ये कौन करता है? ये अराजक, संविधान विरोधी, केवल और केवल अपने उपनाम से जाने वाला गैर जिम्मेदार नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी करता है। सबसे पहले आज कई मामले सर्वोच्च न्यायालय में लगे थे, एसआईआर का जो ये बताते हैं प्रदर्शन, उसको लेकर कुछ याचिकाओं में मैं भी वरिष्ठ अधिवक्ता होने के नाते सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष पेश हुआ। कुछ बात तथ्यों की करेंगे और कुछ जानकारी आपको दूंगा जो सर्वोच्च न्यायालय में हुआ। सबसे पहले बहुत जिम्मेदारी से मैं एक बात कहता हूं, संविधान को पढ़िए, प्रदर्शन का अधिकार आपका मौलिक अधिकार है, लेकिन क्या प्रदर्शन का अधिकार अपनी सीमाएं पार करके, संविधान की परिधि के बाहर जाके किसी भी जगह पे, चाहे वो सार्वजनिक स्थल हो, चाहे वो रोड हो और चाहे सर्वोच्च न्यायालय का प्रांगण हो, यह अधिकार किसी को देता है कि वो गुंडागर्दी करे, नारेबाजी करे? डेजिग्नेटेड साइट्स होती हैं। अ प्रोटेस्ट हैज टू बी पीसफुल, अ प्रोटेस्ट हैज टू बी लीगल, दैट देयर इज प्रायर परमिशन टेकन, एंड अ प्रोटेस्ट हैज टू बी एट अ डेजिग्नेटेड साइट। This is the law of the country. ये भारत का कानून है संविधान के तहत, और तमाम सर्वोच्च न्यायालय के जजमेंट है कि कोई भी प्रदर्शन होगा तो वो अहिंसा पूर्वक किया जाएगा, दूसरा अनुमति ली जाएगी, तीसरा वो केवल और केवल चिन्हित जो प्रदर्शन स्थल हैं वहां पे होगा। 10-11 तारीख को कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी कहते हैं हम प्रदर्शन करते सर्वोच्च न्यायालय जाएंगे। अब ये पूछना पड़ेगा ये किस तरह की हरकत थी नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की। सर्वोच्च न्यायालय का प्रांगण हो या उच्च न्यायालय का प्रांगण हो, यहां पे न्याय होता है, ये न्याय का मंदिर है। क्या भीड़ तंत्र चलेगा? क्या लोग इकट्ठा करके न्यायपालिका को, भारत की न्यायपालिका सबसे ज्यादा मजबूत, निष्पक्ष, और जनता इस पे विश्वास करती है ये हम सब जानते हैं, लेकिन इसको डराने का प्रयास, क्या हजारों समर्थकों की भीड़ लेकर सर्वोच्च न्यायालय के प्रांगण में जाना, नारेबाजी करना, हुड़दंग करना, ये क्या था? क्या यह संवैधानिक था? पहला प्रश्न, क्या एक जिम्मेदार नेता प्रतिपक्ष और मैं तो कहूंगा एक नागरिक भी इस तरह की हरकत कर सकता है? और इसका उत्तर केवल एक है, कोई जिम्मेदार नागरिक ऐसी घिनौनी गैर संवैधानिक अवैध हरकत तो क्या करेगा, वो सोचेगा भी नहीं। लेकिन राहुल गांधी ने ऐसा ही कुछ किया और तमाम वीडियो सामने आए जिसमें राहुल गांधी और राहुल गांधी के समर्थक देर रात जब सर्वोच्च न्यायालय के जो कार्य की अवधि है वो खत्म हो चुकी थी वहां जाते हैं, नारे लगाते हैं। मतलब माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पवित्र प्रांगण को धरना स्थल में परिवर्तित करने का प्रयास एक अराजक नागरिक नेता प्रतिपक्ष गैर जिम्मेदार व्यक्ति राहुल गांधी ही कर सकता है। और बड़ी गंभीरता से मैं आप सबके साथ साझा करना चाहूंगा, यह पहला बिंदु है, याचिका लगी थी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, राहुल गांधी इस याचिका में बाय नेम इंप्लीडेड है, पार्टी है, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसमें नोटिस इश्यू किया है। और एक अधिवक्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता होने के नाते एक बात मैं और बता दूं, जैसे ही ये गुंडागर्दी राहुल गांधी ने सर्वोच्च न्यायालय के प्रांगण में करी, जो अधिवक्ता साथी होते हैं सजग होते हैं, संविधान की रक्षा करने वाले होते हैं, हमारे तमाम साथियों ने एक ज्ञापन जो बार एसोसिएशन है सुप्रीम कोर्ट की, उसमें हस्ताक्षर करके दिया कि ये जो कृत्य किया गया है ये बहुत ही गंभीर है और लोकतंत्र के लिए खतरा है। तो पहला तो मैंने आपको बताया कि उस याचिका में सर्वोच्च न्यायालय ने जवाब मांगा है, नोटिस किया है कि आप सर्वोच्च न्यायालय के प्रांगण के अंदर इस तरह की हरकत जिसको हम अराजक कह रहे हैं कैसे कर सकते हैं, कृपया उत्तर दीजिए। और जब मैं ये बात उठाता हूं बड़ी जिम्मेदारी से, एक बात और कहूंगा, आप सब जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी का मतलब है संविधान विरोधी पार्टी। इनका केरला यूनिट है कांग्रेस का, वेरिफाइड एक्स हैंडल है, देख लीजिए। जैसे ही ये हरकत ऐसी करते हैं, और हम सब जानते हैं किस तरह से सेपरेशन ऑफ पावर का जो डॉक्ट्रिन है संविधान में, जिसमें विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका अलग अलग काम करती हैं, नेता प्रतिपक्ष ने मिलने का समय मांगा भारत के मुख्य न्यायाधीश से, और संविधान की परिधि में रहते हुए माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने उत्तर भी दिया। लेकिन केरला कांग्रेस ने क्या लिखा, डियर सूर्यकांत, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होना चाहिए था, लेकिन लिख क्या रहे हैं, डियर सूर्यकांत, और नीचे लिख रहे हैं, इफ लॉ एंड ऑर्डर इज नॉट योर डोमेन, रिजाइन नाउ, वी विल फाइंड योर रिप्लेसमेंट हु कैन हैंडल इट। ये धमकी, ये सोच, और ये राहुल गांधी के इशारे पे नहीं हुआ है क्या? जब ये पोस्ट सर्कुलेट हो गया तो जो कांग्रेस पार्टी की आदत है, पहले नुकसान करो फिर भाग जाओ, बताते हैं, उसके बाद ये पोस्ट डिलीट कर दिया गया था। इसके साथ दूसरा मुद्दा जो आज सर्वोच्च न्यायालय में बहस हुई वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि कुछ संवैधानिक प्रश्न हैं और ये हर नागरिक पूछ रहा है और खासकर राहुल गांधी से हम भी पूछ रहे हैं। आप स्मैश द पैट्रियार्की कहते हैं, आपको बहुत शौक है महिला सम्मान की बात करें, लेकिन महिला सम्मान सीमित रहे केवल गांधी परिवार की महिलाओं तक। मैं अपनी बात रखूं, मैं एक निवेदन करना

चाहता हूं कृपया करके वो वीडियो चलाइए, ये वीडियो आप देखिए और फिर मैं कुछ संवैधानिक प्रश्न जो उठ रहे हैं जिसपे आज सर्वोच्च न्यायालय ने भी आदेश पारित किया है।

पूछा जाएगा, अगर एक महिला प्रोटेस्टर को केवल और केवल एक महिला पुलिसकर्मी गिरफ्त में ले सकता है या डिटेन कर सकता है या बातचीत कर सकता है, तो एक महिला पुलिसकर्मी को एक पुरुष इस घटिया तरीके से कैसे छू सकता है? द राइट टू डिग्निटी, द राइट टू लिव विद ऑनर ऑल्सो बिलोंग्स टू विमेन पुलिस ऑफिसर्स ऑल्सो, एंड इट इज शेमफुल इंडीड दैट लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी हिमसेल्फ इज इन अप्रोप्रिएटली टचिंग अ लेडी पुलिस ऑफिसर हिमसेल्फ. One, it amounts to violating the dignity of the woman police officer. And no explanation has come forward so far from Mr. Rahul Gandhi. The Congress is silent. Smash the patriarchy is reduced to a slogan and they violate the dignity of our sister. This woman police officer, every citizen is proud of. Hame garv hai apni behan pe jo apni duty kar rahi hai. जब पुलिसकर्मी के साथ आप इस तरह का व्यवहार करते हैं, उसे गलत तरीके से छूते हैं, यह कितना उचित है? हमारा संविधान कहता है एवरीवन इज इक्वल इन द आईज ऑफ लॉ, पहला प्रिंसिपल है. आर्टिकल 21 टॉक्स अबाउट द राइट टू लिव विद डिग्निटी. द पुलिस लेडी ऑफिसर इज डूइंग हर जॉब. ये तीनों प्रिंसिपल्स पे मैं पूछना चाहूंगा, राहुल गांधी क्यों छूते हैं लेडी ऑफिसर को और गलत तरीके से क्यों छूते हैं? वो तो अपनी ड्यूटी कर रही है. महिला के लिए, महिला पुलिसकर्मी आएगी तो महिला पुलिसकर्मी के लिए भी आप प्रियंका गांधी वाड्रा को आगे करते, किसी और प्रोटेस्टर को आगे करते, वो बात करती. ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है राहुल गांधी किसी महिला की और खासकर महिला पुलिसकर्मी की भी इज्जत नहीं करते हैं. और मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपको बता रहा हूं, एक और याचिका सर्वोच्च न्यायालय में फाइल हुई थी, इस मामले को उजागर किया गया, दैट व्हाट अबाउट द डिग्निटी ऑफ विमेन पुलिस ऑफिसर्स. And can anybody, including leader of opposition Rahul Gandhi, touch a lady police officer inappropriately, violating her dignity? One. Two, obstruct a police officer, male or female, from doing her duty, which is a crime under the penal provisions of our country. Kya ye Rahul Gandhi ka hi charitra hai? Sawal. मैं रिक्वेस्ट करूंगा इसी वीडियो को आगे जारी करिए. आप देखिए छुआ कैसे जा रहा है. हाँ, आगे आगे बढ़ाइए. अब ये देखिए, रोक दीजिए, रोक दीजिए. ये पीछे जाएंगे अगर थोड़ा सा. ये दूसरा वीडियो क्यों दिखाया? ये केवल राहुल गांधी की बीमारी नहीं है, ये इनकी मानसिकता है. हम गैंडी परिवार हैं, गैंडी कानून से ऊपर हैं. अस्मिता महिलाओं की होती है, लेकिन अगर वो गैंडी परिवार की हो, अगर वो गैंडी परिवार की नहीं है, तो उनकी कोई अस्मिता नहीं है. उनको कोई हक नहीं है कि वो इज्जत से अपना फर्ज निभाएं. कैसे प्रियंका गांधी वाड्रा, और ये विजुअल्स चल रहे हैं, एक

0: महिला पुलिसकर्मी को मारती है, कोनी मार रही है, धक्का दे रही है, और एकदम से उनकी जो जेड प्लस सुरक्षा है वो एक घेरा बना के उन्हें बचा लेती है। मेरा सवाल ये है, आपने तो लेडी पुलिसकर्मी को धक्का मारा, आपके सुरक्षा घेरे ने आपको तो बचा लिया, लेकिन कहीं शर्मिंदगी हुई प्रियंका गांधी वाड्रा? आप भी तो सांसद नेत्री हैं, आपके मन में यह नहीं आया कि एक महिला पुलिसकर्मी जो अपनी ड्यूटी कर रही है उसको मैं धक्का मार रही हूं और धक्का मार के मैं अपने सुरक्षा घेरे में खड़ी हो जाती हूं? ये चिंताजनक व्यवहार आपने देखा राहुल गांधी प्रियंका गांधी वाड्रा दोनों। अब जब नेता इस तरह का व्यवहार करेंगे, कानून का पालन नहीं करेंगे, उल्लंघन करेंगे, तो जो कांग्रेस का कार्डर है, जो बाकी विपक्षी दल साथ में खड़े हैं, उनके मन का भाव क्या होगा? उनके मन का भाव भी यही होगा कि हमें यह हक है कि हम पुलिस के साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करें, खराब व्यवहार करें, महिला पुलिस कर्मियों के साथ मोलेस्टेशन करें। और मैं बहुत जिम्मेदारी से एक बात कहता हूं कि अगर किसी भी महिला को गलत तरीके से छूना या छूना जहां उसकी मर्जी ना हो, दिस इटसेल्फ अमाउंट्स टू सेक्सुअल मोलेस्टेशन। ये बड़े सवाल आज भारत की जनता पूछ रही है और इस पे भी सर्वोच्च न्यायालय ने नोटिस इश्यू किया है इस याचिका पे भी। तो मैंने आपको बताया दो याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट के प्रांगण में, राहुल गांधी की गुंडागर्दी, पॉलिटिकल स्लोगनेरिंग, जुलूस निकालना, उस पे भी नोटिस है, और महिला पुलिस कर्मियों की जो डिग्निटी है उसको किस तरह से वायलेट कर रहे हैं और उनके जो मूल अधिकार हैं उनका क्या, क्या कोई प्रदर्शन चल रहा है और ड्यूटी पे पुलिस ऑफिसर्स हैं मेल फीमेल दोनों और महिला पुलिसकर्मी है तो उनके फंडामेंटल राइट्स ह्यूमन राइट्स सस्पेंड हो जाते हैं। आप कुछ भी कर सकते हैं, गलत तरीके से छू सकते हैं, कोनी मार सकते हैं, गाली दे सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा संवैधानिक प्रश्न है। और इसके बाद मैं ये भी कहूंगा, ये देखिए तस्वीर है जो याचिका का हिस्सा थी, मैं लेके इसीलिए आया हूं। ये महिला पुलिसकर्मी है, ऐसा उत्पीड़न किया सो कॉल्ड प्रदर्शनकारियों ने कि वो बेहोश हो रखी है, उसको उठा के ले जाया जा रहा, ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि भाई वो ठीक रहे। ये एक और हमारी बहन है वर्दी में, ये सब पिटिशन से ही लाया हूं, ये एनेक्सर P4 page 41। ये इसलिए है कि सच्चाई छुपती नहीं है, तथ्य रखे जाते हैं, हवा हवाई बातें नहीं की जाती है राहुल गांधी की तरह। ये देखिए कैसे महिला पुलिसकर्मी के साथ हिंसा की गई है। इसी तरीके से ये एक और है हमारी महिला पुलिसकर्मी बहन, उसके बिल्ले उखाड़ दिए जाते हैं, जो सम्मान है उसका, जो दशकों की मेहनत के बाद एक पुलिसकर्मी आर्मी के ऑफिसर्स को मिलता है, उखाड़ दिए जाते हैं। ये क्या है, क्या इस पे बातचीत नहीं होगी? बिल्कुल होगी।
1: The BJP, they're hitting out at Rahul Gandhi over his alleged manhandling of a female cop as well as a journalist and saying that the Gandhis think they are above the law. Also accusing Priyanka Gandhi Vadra of hitting a woman police officer, saying her dignity has been violated. The BJP hitting out at the Gandhis over this. We'll slip into a short break. More news coming up on the other side.
2: Going beyond what's said, getting to the reality behind the rhetoric.

0: আমার স্বামীটাকে যেভাবে হত্যা করলে তাদের ফাঁসি দেওয়া তো উচিত।
1: Also, the police action.
2: Taking questions where they matter most.
3: The question is, language ki hum baat kare?
2: Urgent, exact, empathetic.
1: There is no fire escape. There is no alternative safety route.
2: Because when it really matters, someone has to answer. The buck stops here. Weekdays, 8 p.m. only on NDTV. When it really matters.
4: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
5: वाओ मामा क्या स्वाद है।
6: अरे मेरे राजा
7: सेनको से मेरा नाता सालों पुराना है। ये मेरे लिए बस एक ब्रांड नहीं है, ये है एक लेगेसी।
8: यू नो डिजाइन्स कितने हैं? लाख से भी ज्यादा डोज
9: और सारे हैं BIS हॉलमार्क सर्टिफाइड। खूबसूरत कारीगरी भी, हाई क्वालिटी भी।
10: एक परिवार अटूट भरोसा।

और प्योर शाही पनीर मसाला डिलीशियस हेल्दी एवरीडे दिस इज अ वर्ल्ड बिटवीन ऑर्डर्स अनसर्टन अनरिटन एज ग्लोबल इक्वेशन शिफ्ट प्राइम मिनिस्टर

0: सामने मैं इस वक्त रख रहा हूं कि ये इंस्पायर्ड है बांग्लादेश के आंदोलन से, और जैसा बांग्लादेश के अंदर हुआ ठीक वैसा ही ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर हो। ध्यान से देखिए, ये नेहा बोरा के शब्द हैं परंतु विचार राहुल गांधी के हैं, क्योंकि एक तरफ अगर आप ध्यान से देखेंगे नेहा बोरा को अप्रोप्रिएट राहुल गांधी कर रहे हैं, और दूसरी तरफ वही नेहा बोरा कह रही है कि भारत के अंदर बांग्लादेश जैसा अराजक जेंजी आंदोलन वो चाहते हैं।
1: लोकतांत्रिक तरीके से ही आज एक है और भविष्य में विकास के ओर अखंडता और एकता के साथ बढ़ता रहेगा। इस तरह के मतलब बचकाने बयान देकर देश में एक अराजकता फैलाने की, और ये तो एक विचारधारा की ही बात है, मैं उसके बारे में क्या कहूँ। अब युवक हैं, शायद देश को पूरी तरह समझे नहीं है, अनजान है, और ऐसे तो खैर ठीक है, कई आते हैं बोलते हैं, मगर आज भी पूरे 145 करोड़ देशवासियों को अपने वोट का अधिकार हमारे संविधान के आधार पर मालूम है, और उसका ठीक उपयोग करके ही इस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाए रखते हैं।
2: बीजेपी हैज अ स्क्रिप्ट राइटर्स एंड नैरेटिव सेटर्स व्हिच दे जस्ट डू बिकॉज दे डू नॉट हैव आंसर्स टू ऑल दोज रेलेवेंट क्वेश्चंस, ऑल दोज रेलेवेंट इश्यूज व्हिच द स्टूडेंट्स आर आस्किंग, विद यूथ इज आस्किंग, विद एमपीज आर आस्किंग, विद इंडिया ब्लॉक इज आस्किंग, कांग्रेस पार्टी इज आस्किंग, और लीडर ऑफ ऑपोजिशन इज आस्किंग, राहुल गांधी इज आस्किंग, दे डू नॉट हैव आंसर्स, दे डू नॉट हैव इवन आंसर्स for the concerns, the dissent notes given by the election commissioners who is appointed by them. So this is the situation. Now BJP can script whatever they want, they can say, try to set the narrative, but India is watching, people of India are on the streets, so it is not going to be making any wave whatever their narrative setting they do.
3: All right, let's go across to Tanushka for more on this entire controversy. And Tanushka, this really, you know, stems from Neha Bora's statement saying that she was inspired by the Bangladesh Gen Z movement, the students' movement over there that, you know, led to a regime change. The BJP hitting out saying this is exposed Neha Bora and the Congress, and they are aiming for regime change, though the fight is against the chief election commissioner. Tanushka, if you can hear me. All right, so it seems we will try and reconnect with Tanushka, but the big controversy there with Neha Bora's statement, where she has said that she's inspired by the Bangladesh Gen Z movement, and she is saying that, you know, that is what has led, that they too are, and she appreciates what the youth there did and is inspired. Now, this is something the BJP has hit out over. Now, the Supreme Court of India has questioned Rahul Gandhi over his protests in the Supreme Court. Remember the march that Rahul Gandhi led from Barakamba Road to the Supreme Court, the top court, pulling up Rahul Gandhi over his conduct during the October 12th protest in the Supreme Court premises. And it has expressed displeasure over Rahul Gandhi's march, saying that we are not detached from the real world. We are aware of everything. Meanwhile, the Supreme Court has also issued a notice to the Election Commission of India, Chief Election Commissioner Gyane Kumar, and the two other election commissioners on a plea filed by the opposition leaders, filed by Rahul Gandhi. Now, some breaking news coming in from Punjab and Parvinder Singh Jota murder case. This is the anti-drug protester who was shot dead, the activist who was shot dead by a chemist who he accused of dealing in drugs. And now the breaking news coming in, the main accused and aide have been sent to 10-day police remand. Parvinder Singh Jota murder case, main accused Ashwini Kumar and Vipin Kumar, who was accused of helping him evade arrest, were produced before the Mansa court by video conferencing. The court has now remanded both the accused to 10 days of police custody. I remember the activist Parvinder Singh Jotha, who is an anti-drug activist, had accused the chemist. There you can see that video where he goes and he accuses the chemist of dealing in drugs, and he takes out a gun there and he shoots him dead. Shocking visuals there, and it's led to a huge political controversy as well in Punjab, with the opposition saying that Bhagwant Mann should resign over this, raising questions over the law and order situation in the state. The breaking news now coming in is that the main accused, that is the chemist who, you know, shoots dead the activist, as well as an aide who helped him evade arrest, Vipin Kumar. Ashwini Kumar is the chemist. Vipin Kumar is accused of helping him. They have been produced before the court and they have been remanded to 10 days of police custody. All right, more breaking news now coming in, and Rahul Gandhi has slammed the Aam Aadmi Party government in Punjab, questioning the drug menace is a death sentence, is what he has said. So he's hit out at Bhagwant Mann over what's taken place, and an anti-drugs activist being shot dead. Rahul Gandhi saying the activist shot dead in broad daylight. The chief minister's own village is suffering from drugs, and a complainant charged as accused. Who will protect anti-drug fighters? So Rahul Gandhi also stepping in. Do remember, opposition, you know, BJP, Congress have been highlighting this issue, Akali Dal as well. And now Rahul Gandhi too hitting out at Bhagwant Mann, saying just questioning the drug menace can be a death sentence in Punjab. Let's go across to Mohammed Ghazali now for more on this story. And Ghazali, so Rahul Gandhi also speaking out on this, you know, huge controversy that's taking place in Punjab over the killing of the anti-drug activist.
4: That certainly shows that law and order situation as a whole, but the drug issue is going to be the main pole plank of the opposition parties. For the last 48 hours since this incident happened, the killing of Parvinder Singh, an anti-drug crusader in Mansa, the opposition parties, be it Congress, be it BJP, or even other parties, have been targeting the AAP government here in Punjab. But today, since Rahul Gandhi has tweeted it out, and we are also being told that from tomorrow, there is going to be a five-day yatra by Sachin Pilot, the Punjab affairs in charge of the Congress party, who will be going and meeting the victims, the families of the victims who have taken the brunt of law and order situation, either being attacked by drug mafia or being attacked while performing their duties. So this is going to be a emerging issue. This issue is going to hog the limelight for the next couple of weeks, at least ahead of elections. The AAP government is under extreme scrutiny from the opposition parties, from the civil society organizations as well.
3: Right.
4: And the anger is also spilling on the...
3: All right, Ghazali, thanks so much for joining us with those details. So Rahul Gandhi also hitting out over this huge controversy currently in Punjab. The murder of anti-drugs activist Parvinder Singh Jotha triggering major outrage across Punjab. A statewide Punjab Bandh being observed today, led by Jotha's father Bheem Singh and a joint action committee. Our protesters are demanding that the CBI probe into the murder. Meanwhile, DIG Harjeet Singh meets the family, but Jotha's family has refused to conduct the last rites demanding justice. Now, the opposition launched a united attack on the Mann government, with the Congress alleging police complicity. The BJP questioning the collapse of law and order, while the Akali Dal has demanded the chief minister's resignation. Chief Minister Bhagwant Mann, meanwhile, has assured the family that no culprit will be spared, promising the strictest action.
5: ਦਰ ਸਿੰਘ ਚੋਟੇ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਨ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਡੀਜੀਪੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪੇ ਹੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਇਸ ਕਤਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੈਂਟਰਲ ਬਿਊਰੋ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ CBI ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ, ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
6: ये जो भी कोई पंजाब में कानून तोड़ने की कोशिश करेगा उसको बहुत ही हैवी हैंड से लिया जाएगा। आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब ने इसको लेके अपना बयान भी दिया है, स्टेटमेंट जारी करी है और दोषियों के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज हो चुका है और उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। बिल्कुल जो भी इलीगल काम पंजाब में करेगा उसके साथ हम सख्ती से पेश आएंगे। और दूसरा, मैं परमिंदर जी के परिवार के साथ संवेदना प्रकट करता हूं, क्योंकि बहुत उनके परिवार के लिए बहुत ही दुखदायक घटना है और हमारे सभी के लिए दुखदायक घटना है, सो हम संवेदना प्रकट करते हैं। और दूसरा, जो भी पंजाब में नशे का काम करेगा या किसी के खिलाफ कोई पर्सनल काम करेगा तो उसके खिलाफ हम सख्त एक्शन लेंगे।
7: टोटल बंद इन पंजाब, और बड़े लंबे समय के बाद आपने ऐसा दिन देखा है कि जहां हर पंजाबी इस बात को महसूस कर रहा है कि ड्रग्स बहुत बड़ा इशू है और परविंदर झोटे के सत्कार की वजह एक टोटल बंद हुआ है। उसकी फैमिली, उसके बच्चे, उसकी माँ, जो वो सारे सीन सब ने देखे हैं, आई थिंक इट हैज़ मूव्ड द वर्ल्ड। पंजाबी तो उससे आहत है ही, दुखी है ही कि क्यों एक कीमती जान गई है, मगर ही हैज़ बिकम द इग्नाइटिंग पॉइंट, ही हैज़ बिकम द रैलिंग पॉइंट, हिज डेथ हैज़ बिकम द टिपिंग पॉइंट कि आज लोग ये महसूस कर रहे हैं कि दिस गवर्नमेंट नीड्स टू गो।
8: ਕੱਲੇ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਬਿਲਕੁਲ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਸਮਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲੀ ਹੋਈ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਨਸ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਆ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋਸ਼ ਤੇ ਹੋਸ਼ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਆ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਵੈਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚੱਲਦੀ ਇਹ ਧਾੜਵੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਚਾ ਲਈਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾ ਲਈਏ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਬਿਹੇਵ ਕਰਨ।
9: ਪਰਮਿੰਦਰ ਝੋਟਾ ਜੋ ਇੱਕ ਐਂਟੀ ਡਰੱਗ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਦਾ, ਉਸਕੋ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰਦੀ, कोई ऐसा दिन नहीं है पंजाब में, सुबह उठते हैं तो ये पता चलता है कि इतने आदमी गोलियों से मार दिए गए। लॉ एंड ऑर्डर की बहुत बुरी हालत है, नशे तो मुद्दे तो बहुत है पंजाब के, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा नशा, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत बड़ी, हमने यात्रा भी निकाली। यात्रा की शुरुआत हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी ने की, फिर सारे बड़े बड़े मंत्री साहब आए, हमने 4 दिशाओं से शुरू करके उसको ख़त्म किया। जलंधर में वहाँ पे हमारे गृह मंत्री साहब आए, एक बहुत बड़ी जनसभा की, वहाँ पे मंत्री साहब ने, गृह मंत्री साहब अमित शाह जी ने लोगों से ये भी बताया कि अगर इसको ख़त्म करेगा तो भारतीय जनता पार्टी ही करेगी।
3: In other news now, actor Imran Khan has been directed to leave India by the 28th of October following a notice issued by the Mumbai FRRO. He's likely to approach the court over this action, over this direction that he's been given. Now, this follows his participation in the protest march demanding resignation of Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar. The Mumbai police say the action has been initiated under relevant immigration law as Imran Khan is not an Indian citizen. Now, Imran Khan, who is Amir Khan's nephew, is likely to challenge this order, as we said, in court. And reacting to the development, Maharashtra MOS Home Yogesh Kadam said the notice to Imran Khan was issued under the Foreigners Act, stressing that the action follows due legal process and is not driven by any personal grudge. Meanwhile, opposition has criticized the notice to Imran Khan, saying deporting someone for protesting is wrong. The development follows a complaint by BJP leader Kirit Somaiya, who alleged that violations of OCI rules and questioned the actor's participation in the protest.
10: MOS Home, Yogesh Kadam is with us. Because he is a celebrity, because he is an actor, he has been targeted, the question are being raised.
11: See, you can even think from other point of view. Because he's a celebrity, he decided to come and protest and maybe gain some fame. Hmm. I can also ask that. See, here the issue is very clear. If you are an American citizen and you are participating in such act, while you were entering the country, you had taken a visa And in that visa, there were some conditions that there are some do's and don'ts. And you have to follow those. Hmm. You cannot act up visa leke aa jaoge, you will enter the country and you will just act haywire. It doesn't work like that.
12: Hmm.
11: There are acts you have to follow, the visa conditions you have to follow, and if you violate these conditions, you'll have to face the notice. I think the notice which has been issued is regarding this only.
13: American nagrik Imran Khan, पाकिस्तान से पैसा रहा है, विदेश की ताकत और ऐसे विदेशी नागरिक हिंदुस्तान में अराजकता फैलाने का षड्यंत्र, इमरान खान के खिलाफ मैंने शिकायत दी थी। इमरान खान को 28 अक्टूबर तक हिंदुस्तान छोड़ना है। ऐसे जो भी होंगे, इमरान होंगे, इकबाल होंगे, यूसुफ होगा, अब्दुल होगा, जो विदेशी नागरिक विदेशी पैसा, उनके ऊपर ऐसी ही कार्रवाई होगी।
14: मुझे इस विषय के बारे में जानकारी नहीं, लेकिन हिंदुस्तान के नागरिक हिंदुस्तान का हित सोचेंगे। कोई अलग देश का नागरिक हिंदुस्तान में डिस्ट्रप्शन नहीं कर सकता है। और मैं आपके माध्यम से विनती करना चाहूंगा, जिस प्रकार का पॉजिटिव माहौल है, हमारे कॉम्पिटिटर जब उसका कॉम्पीट नहीं कर पा रहे, तो कुछ अलग अलग तरीके के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से देश के खिलाफ साजिश कर रहे, अराजकता कर रहे। क्योंकि आपने देखा कि चेक के डिप्टी सीएम ने बोला कि यहाँ पे स्टेबिलिटी है पिछले 10-15 साल से, इसलिए हम लोग पॉलिसी की स्टेबिलिटी है, इसलिए हम लोग यहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो कुछ लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि विश्व में बताने के लिए कि भारत में स्टेबिलिटी नहीं है, भारत में पॉलिसी के बारे में चेंजिंग है और भारत सुरक्षित नहीं है, ऐसा एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे। लेकिन वो लाख कोशिश करे, वो हार जाएंगे, क्योंकि भारत हर बार जीता है, हर बार जीतेगा।
15: आंदोलन करायचा अधिकार प्रत्येकाला आहे। आता म्हणे त्याला त्याचा फॉरेन पासपोर्ट आहे का काय, आता आमचे पण किती फ्रेंड्स परदेशात राहतात, तेही आंदोलन करतात तिथे, म्हणून त्या लगेच हद्दपार कोणी करत नाही। दुर्दैव आहे, एखाद्याला तुम्ही समाज प्रेमाने देऊ शकता, लोकशाही पद्धतीने प्रत्येकाचे काय अधिकार आहेत नाही आहेत याच्यावर चर्चा होऊ शकते, पण म्हणून एखाद्याला डायरेक्टली हद्दपार करणं का, तर त्यांनी आणि असा काय गुन्हा केलाय। अहो, या देशामध्ये ज्यांनी हत्या केल्यात, बलात्कार केलेत, याच अनेक राज्यांचे मुख्यमंत्री आहेत, आता कशाला मला बोलायला लावताय। एक मोठं राज्य आहे देशातलं, ज्याच्यामधल्या मुख्यमंत्र्यावर खुनाचे आरोप आहेत, मुख्यमंत्री ठेवलाय ना, यांनी तर बिचाऱ्यांनी आंदोलनच केलंय।
16: हमारे साथ फिल्म मेकर अशोक पंडित साहब, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी बात करने के लिए। फिल्म मेकर्स, आप फिल्म मेकर हैं और मैं आपसे सवाल यही पूछना चाहूंगा कि इमरान खान अभी हाल ही में उनको जो पैरो है, उन्होंने 28 अक्टूबर तक देश छोड़ने के लिए कहा है, तो बतौर फिल्म मेकर, एज ए फिल्म मेकर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या आपकी प्रतिक्रिया है?
17: देखिए, एज ए फिल्म मेकर जो है वो मुझे लगता है मैं ज़्यादा कंफर्टेबल फील करूँगा इफ आई रिएक्ट एज ए सिटीजन। मुझे लगता है कि एज ए सिटीजन की वैल्यू ज़्यादा है, और जहाँ देश की बात होती है तो वहाँ पर फिल्म मेकर हो।

बड़े शहरों में बन रहे हैं। इस स्कीम के तहत खिलाड़ियों को भी सीधे मदद दी जा रही है, उन्हें आउट ऑफ पॉकेट अलाउंस दिया जा रहा है। टॉप स्कीम के तहत खिलाड़ियों को 50,000 रुपये महीने मिल रहे हैं। अगर किसी खेल में कोचिंग के लिए देश से बाहर जाने की जरूरत है तो सरकार उसे भी फैसिलिटेट कर रही है, उसके लिए आर्थिक सहायता दे रही है। साथियों, युवाओं को खेलने और कम्पीट करने के ज्यादा से ज्यादा मौके मिले, इसके लिए विंटर गेम जैसे इवेंट शुरू किए, सांसद खेल प्रतियोगिताएं शुरू की गई, देश ने नई स्पोर्ट्स पॉलिसी खेलो भारत नई नीति बनाई। हमारे दिव्यांग खिलाड़ी भी अपनी प्रतिभा और सामर्थ्य से देश का गौरव बढ़ा रहे हैं। उनके लिए भी खेलों में बेहतर अवसर और आधुनिक सुविधाएं सुनिश्चित की जा रही है और इसलिए ही आज हर खिलाड़ी को यह भरोसा होता है कि उसकी पूरी जर्नी में देश उसके साथ खड़ा है। और जब खिलाड़ी को यह एहसास रहता है तो वो देश के लिए क्या करके दिखाता है, आप सब खुद इसके उत्तम उदाहरण है। साथियों, इस बार एशियन गेम्स में टीम इंडिया के कई खिलाड़ी ऐसे भी थे जिनकी उम्र 15-17 साल ही है। इतनी कम उम्र में इन खिलाड़ियों ने अपने शानदार प्रदर्शन से देश का गौरव बढ़ाया है, देशवासियों का दिल जीता है। ये दिखाता है कि सफलता के लिए उम्र कोई बंदिश नहीं होती, बल्कि खेलों में तो कम उम्र से की गई शुरुआत एक एडेड एडवांटेज होती है। इसलिए हमारी कोशिश है कि खेलों में प्रतिभा की पहचान कम उम्र से ही हो। 5 से 15 वर्ष के बच्चों में खेल प्रतिभाओं की पहचान और उनकी ट्रेनिंग पर हमारा विशेष फोकस है। आने वाले वर्षों में हजारों नए खिलाड़ियों को खेलो इंडिया और इमर्जिंग खेलो इंडिया के माध्यम से आगे बढ़ने के लिए अवसर मिलेंगे। हमें आने वाली खेल प्रतियोगिताओं की तैयारी को और मजबूत करना है। 2028 में लॉस एंजेलिस ओलंपिक्स है, 2030 में भारत कॉमनवेल्थ गेम की मेजबानी करेगा और 2036 में ओलंपिक्स की मेजबानी करना भी भारत की आकांक्षा है। इसी को देखते हुए मैंने लाल किले से टैलेंट हंट अभियान चलाने की बात कही है। आज गांव गांव तक जाकर प्रतिभाओं को तलाशा जा रहा है और उन्हें तराशा भी जा रहा है। यही खिलाड़ी आने वाले समय में भारत के लिए मेडल्स लेकर आएंगे। साथियों, हमारे सपने बड़े हैं, हमारे संकल्प भी बड़े हैं और इन्हें पूरा करने का आत्मविश्वास भी आज हिंदुस्तान के पास है, हर हिंदुस्तानी के पास है। और इसलिए
मैं

उदाहरण है, एक एग्जाम्पल है कि कैसे आज देश का युवा हर बुलंदी को छूने के लिए अधीर है। ऐसा कोई मुकाम नहीं है जो भारत के युवाओं के हौसले से बड़ा हो। ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है जो हमारी युवा शक्ति के सामर्थ्य के बाहर हो। संभावनाओं का असीम आकाश सामने है और मंजिल भारत का युवा खुद तय कर रहा है। इसलिए देखते ही देखते भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। हमारे युवा आज स्पेस सेक्टर में अपनी कंपनियां बना रहे हैं, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। यही युवा डिफेंस सेक्टर में नई तकनीक विकसित कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में नए प्रयोग कर रहे हैं। और ये बदलाव केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं है। जैसे खेलों में आज दूर दराज की प्रतिभाओं को भी मौका मिल रहा है, वैसे ही आज स्टार्टअप, रिसर्च और दूसरे उद्यमों में भी छोटे शहरों और गांवों के युवा नए आइडिया लेकर आगे आ रहे हैं। इस आत्मविश्वास के पीछे एक बड़ा भरोसा है। बीते एक दशक में देश ने जो व्यवस्थाएं विकसित की है, उनसे युवाओं को भरोसा मिला है कि वे बड़े सपने देख सकते हैं। उन्हें विश्वास है कि उनके सपनों को आगे बढ़ाने के लिए देश का पूरा सामर्थ्य उनके साथ खड़ा है। साथियों, हमारे प्रयासों का लाभ केवल मैदान में खेलने वाले खिलाड़ियों तक सीमित नहीं है। स्पोर्ट्स कोचिंग, फिजियोथेरेपी, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग जैसे क्षेत्रों में भी युवाओं के लिए नए कैरियर के अवसर बन रहे हैं। खेलों के विकास के साथ साथ इनसे जुड़े अनेक प्रोफेशन भी आगे बढ़ रहे हैं। इससे युवाओं के लिए रोजगार और उद्यम के नए रास्ते बने हैं। साथियों, आज हम जिस किसी भी फील्ड में हैं, हमें अपनी सफलता के लिए परिश्रम तो करना ही है, साथ ही नई पीढ़ी को गढ़ने की जिम्मेदारी भी उठानी है। अब आपके पास इंटरनेशनल टूर्नामेंट का भी अनुभव है और इसलिए मेरा आग्रह होगा, आप कुछ समय उन बच्चों को जरूर दें जो आपकी तरह आगे बढ़ने का सपना देख रहे हैं। आपके पसीने से उनके सपनों को सींचना है। सफलता तब आती है जब भी अवसर मिले। अपने गांव, अपने शहर के बच्चों से मिलिए, अलग अलग स्कूलों में जाइए, जिस मैदानों पर आपने खेलना शुरू किया था वहां जरूर जाइए। आपके अनुभव उन बच्चों के बहुत काम आ सकते हैं। हो सकता है आपकी एक छोटी सी बात किसी बच्चे को खेलों में आगे बढ़ने का हौसला दे दे। साथियों, देश के युवाओं को आपसे केवल स्पोर्ट्स की ही प्रेरणा नहीं मिलती है, क्योंकि खेल की भूमिका केवल मैदान तक ही सीमित नहीं है। खेल हमें जीवन में अनुशासन सिखाते हैं, जीवन में गिरकर फिर से खड़े होने की, हार कर जीतने की सीख खेलों से मिलती है। एक लक्ष्य के लिए कैसे लंबे समय तक

0: अटल रहना है, कैसे परिस्थितियों के हिसाब से खुद को ढालना है। स्पोर्ट से ये हमारे हर रोज के जीवन का हिस्सा बन जाता है। यही स्पोर्ट पर्सन स्पिरिट जीवन भर काम आती है। साथियों, मैं हमेशा कहता हूं, जो खेलेगा वो खिलेगा। आप भी खेलते रहिए, खिलते रहिए, आने वाली प्रतियोगिताओं और भविष्य के सभी प्रयासों के लिए एक बार फिर मेरी तरफ से आपको अनेक अनेक शुभकामनाएं। आपका ये उत्साह, ये आत्मविश्वास, यही नए भारत की सबसे बड़ी ताकत है। इसी आत्मविश्वास के साथ हमें भारत को नई बुलंदियों तक पहुंचाना है। तो आइए एक बार फिर पूरी ताकत के साथ मेरे साथ बोलिए, विकसित भारत, विकसित भारत एट 2047, वी विल डू इट, वी विल डू इट। टॉप थ्री इकोनॉमी, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब, टेक्नोलॉजी में भारत की लीडरशिप, अंतरिक्ष में कदम, ओलंपिक्स का आयोजन, नए खेलों में मेडल्स, यस वी विल डू इट। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: कैप्टन नरेंद्र मोदी मीटिंग विद द इंडियन कंटिंजेंट। And well, that was Prime Minister Narendra Modi with the Prime Minister Modi meeting with the Indian contingent at the Major Dhyanchand National Stadium, where he lauded and he met all the winners of the Asian Games, because this time around there were women athletes who won at least major gold medals. India won a total of 21 gold medals, out of which 35 medals out of the 85 that India has won were made by the women athletes. On that, we're slipping into a very short break. Come right back.
2: We often speak of a changing world, but what we are witnessing today is more profound. It's a contest over the rules that will shape our collective future. Alliances are being tested. Economic interdependence is becoming a source of strategic leverage. AI is redefining power, while global institutions struggle to keep pace. The old order is giving way, and the new one is yet to take shape. India has an opportunity not just to navigate this transition, but to help define it. On the 22nd and 23rd of October, the NDTV World Summit will bring together global leaders, policymakers, and influential thinkers to examine the forces reshaping our world. Join us as we explore a world between orders and the choices that will define our future.

0: ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज को शेप कर रही है.
1: द वर्ल्ड्स मोस्ट इन्फ्लुएंशियल माइंड्स कम टुगेदर टू डीकोड अ चेंजिंग वर्ल्ड.
2: Video are going to change society.
3: We serve the globe right here from India.
1: At the NDTV World Summit 2026, a world between orders. 22nd and 23rd October, New Delhi. The sharpest global voices. Decode a world between orders. Dr. Swarnim Wagle. General David Petraeus, Swami Sarvapriyananda, Mike Walsh, Nicholas Butts, at the NDTV World Summit, A World Between Orders, 22nd and 23rd October, New Delhi.
4: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात.
5: वाओ मामा, क्या स्वाद है.
4: अरे मेरे राजा.

0: जो होना है वो तो होना ही है, रंगीले तू सदा मुस्कुरा, सदा सदा सदा मुस्कुरा। रंग रंग रंग रंग रंग रंगीने रंग रंगीने रे, देखो कैसे भी हो दिन रंग बना रहे,
1: बोझे पेंट रंग बना रहे।
2: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से, देश का टायर जेके टायर।

0: यकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर व मिसली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
1: जब तक लाजवाब न बन जाए उसे नहीं इत्मीनान है, तभी तो रिचमंड बनना नहीं आसान है।
2: द शार्पेस्ट ग्लोबल वॉइसेस डिकोड अ वर्ल्ड बिटवीन ऑर्डर्स, डॉक्टर स्वर्णिम वागले, जनरल डेविड पेट्रियस, स्वामी सर्वप्रियानंदा, माइक वॉल्श, निकोलस बक्स,

0: जो होना है वो तो होना ही है, रंगीले तू सदा मुस्कुरा, सदा सदा सदा मुस्कुरा। रंग रंग रंग रंग रंग रंगीने रंग रंगीने रे, देखो कैसे भी हो दिन रंग बना रहे,
1: बोझे पेंट रंग बना रहे।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।

0: आर प्योर शाही पनीर मसाला डिलीशियस हेल्दी एवरीडे
1: व्हेन अदर्स आर वार्मिंग अप आई एम रेयरिंग टू गो द स्टोरीज दैट मैटर द स्टोरीज दैट शेप योर लाइफ
2: हेलो एंड वेलकम टू वाचिंग प्राइम टाइम विद मी रेशा सेगर और सैंडी
1: The show that sets the prime time agenda.
2: We'll be deep diving into this topic to tell you what's at stake.
1: Join me, Raisha Sehgal, on Prime 5, weekdays at 5 p.m. only on NDTV, when it really matters.
0: Meetha ya namkeen, chahe jaise khao, 100% suji se bani, are pure vermicelli, swadisht, sehatmand, har roz.

0: New Delhi. रंग रंग रंग रंग रंग रंगीन रंग रंगीन रे, देखो कैसे भी हो तीन रंग बना रहे,
1: बोझे पेंट्स रंग बना रहे।
2: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
3: देश का टायर जेके टायर।
4: यार लोन भूल गया मैरी। इट्स जस्ट अ गुड बैंक ना,
5: उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक।
4: स्मॉल फाइनेंस बैंक,
5: स्मॉल वर्किंग कैपिटल लोन, होम लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, माइक्रो मॉर्गेज लोन, गोल्ड लोन, प्री ओन कार लोन, टू व्हीलर लोन।
6: देयर्स नथिंग स्मॉल अबाउट
5: इट। उज्जीवन, नथिंग स्मॉल अबाउट अस।
7: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हिट तो है इसकी खास बात।
8: वाओ मामा क्या स्वाद है।
9: अरे मेरे राजा,
10: सबका राजा आर्टियल मसाला।
11: हर बार वही गोल्ड ज्वेलरी कैसे पहन सकती हूँ, पर इस जमाने में नई नई गोल्ड ज्वेलरी खरीदना भी तो इम्प्रैक्टिकल है। तो फिर सेनको का ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज।
12: एंजॉय करें 0% डिडक्शन किसी भी ज्वेलर के गोल्ड ज्वेलरी एक्सचेंज पर और खरीदें अपने पसंदीदा सेनको गहने।
13: गाइस मेरा तीसरा स्टोर, अब एक्सपेंशन के लिए ना एक बैंक चाहिए। एनी सजेशंस? जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। स्मॉल
5: स्मॉल, अब पूरी पिक्चर देख लो। लोन ऑप्शंस बिग, सेविंग्स और एफडी पे इंटरेस्ट बिग, ब्रांच नेटवर्क बिग। अगर स्मॉल होता तो मैं साइड में होता। और जीवन, नथिंग स्मॉल अबाउट अस।
14: कोड ऑफ कंडक्ट लगाया हुआ है।
15: गोइंग बियॉन्ड व्हाट सेड, गेटिंग टू द रियलिटी बिहाइंड द रेटोरिक।
16: আমার স্বামী যাকে যেভাবে হত্যা করলে তাদের ফাঁসি দেওয়া উচিত।
17: Also the police action,
15: taking questions where they matter most.
18: The question is language ke baat kare,
15: urgent, exact, empathetic.
19: There is no fire escape, there is no alternative safety route,
15: because when it really matters someone has to answer. The buck stops here, weekdays 8 PM only on NDTV. When it really matters.
20: A verdict can change a business. A law can reshape an industry. A regulation can create an opportunity or a risk. Because what happens in courts could have a direct impact on your business. Join me as I decode what legal decisions mean for markets, businesses, and investments. Closing argument, only on NDTV Profit.
0: The sharpest global voices decode a world between orders. Dr. Swarnim Wagle, General David Petraeus, Swami Sarvapriyananda, Mike Walsh, Nicholas Butts, and the NDTV World Summit, A World Between Orders, 22nd and 23rd October. New. This is A World Between Orders. Uncertain, unwritten. As global equations shift, Prime Minister Narendra Modi will lead the conversation at the NDTV World Summit 2026 to decode the shifts, redraw possibilities. NDTV World Summit 2026, A World Between Orders, 22nd and 23rd October, New Delhi.
15: Going beyond what's said, getting to the reality behind the rhetoric.
16: আমার স্বামী যাকে যেভাবে হত্যা করলে তাদের ফাঁসি দেওয়া উচিত।
17: Also the police action,
15: taking questions where they matter most.
18: The question is language ke baat kare,
15: urgent, exact, empathetic.
19: There is no fire escape, there is no alternative safety route,
15: because when it really matters someone has to answer. The buck stops here, weekdays 8 PM only on NDTV. When it really matters.